एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: तो वहां तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे, यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं प्रभु भक्ति को समर्पित कार्यक्रम वंदना। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अस्वर्दीन जानकी माता, हे संकट मोचन हनुमान, हमारे भी संकट हर लीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे

जैसे हर पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखने से सेतु बन गया हे प्रभु, वैसे ही

ये संसार माया जाल है, इससे मुक्त होने का एक ही सरल साधन है, भक्ति, भजन और भगवत नाम। यही तो स्मरण है, यही तो है जो प्रातःकाल में प्रभु सिमरन कर हम अपनी जिंदगी को खुशी में बना सकते हैं।

सृष्टि के कणकण में श्याम तुम्हारा ही जलवा है। तुम्हारे मुस्कुराते हुए रूप को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और बस यही गुनगुनाने लगता है।

हम भारत माँ की संतानें हैं, हमें गर्व है अपनी मातृभूमि पर। आइए नमन करते हैं अपनी धरा को।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को आज अपने सुरों से सजाया पंडित भीमसेन जोशी, पंडित हरिओम शरण, गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा और जगजीत सिंह ने। इन्हीं सुरों के साथ वंदना कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए हैं दान। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का है, वाचन पुष्पा शर्मा का है।

0: समाज में निर्धन भी हैं और धनवान भी हैं। बहुत से धनवान ऐसे हैं जो निर्धनों की यथासंभव सहायता करते हैं। सहायता करते समय बहुतों के मन में यह भाव रहता है कि वे दीन दुखी के कुछ काम आ पा रहे हैं। किन्हीं के मन में यह भाव आता है कि वे आवश्यकता से अधिक संग्रहित अपने धन को अच्छे कार्य में लगाकर पुण्य प्राप्त कर लें। किसी की यह धारणा होती है कि दान करने से उन्हें ईश्वर की कृपा के साथ साथ यश भी प्राप्त होगा, किंतु इसके साथ ही कुछ लोगों के मन में दूसरों के प्रति एहसान करने का भाव भी आता है। ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि हम धार्मिक कार्यों में जो धन व्यय करेंगे, ईश्वर इसका कई गुना धन उन्हें दिलाएगा। इस प्रकार किसी न किसी आसक्ति के साथ यदि दूसरों की सहायता की जाती है तो उसे निस्वार्थ सहायता नहीं माना जा सकता है। विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की आसक्ति से दूर होकर दूसरों की सहायता करते हैं। ऐसे लोगों को दरिद्र में नारायण के दर्शन होते हैं। वृंदावन के एक वीतरागी संत की सत्य घटना है। एक धनी मानी सज्जन उनके भक्त थे। वह जब उनके दर्शनों को आते थे तब कुछ ना कुछ भेंट करके जाते थे। एक बार वह जाड़े के दिनों में आए और उन्हें काश्मीर का एक बहुत ही कीमती शाल भेंट करके गए। संत पर जाड़े से बचाव के लिए एक ऊनी कंबल था, इसलिए उन्हें शाल की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई और वह उन्होंने अपनी कुटिया के एक कोने में रख दिया। संत के पास एक गरीब ब्राह्मण आया करता था और कुटिया के आसपास सफाई आदि का कार्य कर दिया करता था। कुछ देर वह बाबा के साथ सत्संग में बैठता और चला जाता था। एक दिन उन्होंने देखा कि वह जाड़े के कारण कांप रहा था। उसके पास सूती कपड़े थे। बाबा को शाल का ध्यान आया और उन्होंने वह शाल उसे दे दिया। कुछ समय बाद शाल देने वाले धनी मानी सज्जन बाबा के पास आए। संयोग से वह ब्राह्मण भी उस समय वहां था और उसने शाल ओढ़ा हुआ था। उसके पास अपने द्वारा दिए गए शाल को देखकर धनी मानी सज्जन को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बाबा से कहा कि मैंने तो यह कीमती शाल आपको दिया था और आपने किसी और को दे दिया। बाबा उसके मन की बात समझ गई और बोले, देखो, तुम्हारे पास जो भी वस्तु है उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम उसका स्वयं उपयोग कर सकते हो, चाहो तो उसे किसी को भी दे सकते हो। तुमने वह वस्तु मुझे दे दी किंतु उसकी आसक्ति अपने पास बनाए रखी। मुझे यह मालूम नहीं था कि उसके उपयोग का अधिकार मुझे नहीं है। तुम्हारे द्वारा दिए गए शाल की आवश्यकता न मुझे थी और न है। उसे संग्रह करके रखने की आसक्ति मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने उस गरीब ब्राह्मण की आवश्यकता समझकर उसे दे दिया। धनी मानी सज्जन के हृदय चक्षु खुल गए। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की और कहा कि अब तक मैं दान प्रतिदान पाने की भावना से करता रहा था। आज मुझे यह अनुभव हुआ कि दान आसक्ति रहित होकर उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार परमात्मा प्राणी मात्र पर अपनी कृपा का दान करता है।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए थे दान। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का था, वाचन पुष्पा शर्मा ने किया था। FM 102.2 MHz पर आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान पाठ से लिए कुछ संगीतबद्ध अंश। स्वर ए हरिहरन का है, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता

का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से लिए कुछ संगीतबद्ध अंश। स्वर ए हरिहरन के थे, संगीतकार थे सतीश भाटिया। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका का कार्यक्रम चित्र भारती सुनिएगा रात्रि 9:30 से। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 से आप सुन सकेंगे। दोनों ही कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। किसान भाई और बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे किसान वाणी संध्या 6:15 से। इस कार्यक्रम में आज की वार्ता का विषय लेकर आएंगे बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ऋतिक नामदेव पवार। संध्या 7:05 पर समय रहेगा ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का।

अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:10 पर। कार्यक्रम सुनिएगा पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी, जिसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र करेगा। युवावाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:30। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में विषय लेकर आएंगे प्रदूषण रोकने में युवा करें पहल, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जयंती। इसी के साथ युवा साथी स्वर्णिम संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर अंगना आप सुन सकेंगे 1:15 से। 1:45 पर सामुदायिक गान शिक्षा पाठ में आज हम आपको सुनवाएंगे तमिल भाषा में गीत। महेश दत्त चतुर्वेदी की गाये ब्रज लोकगीतों का आनंद ले सकेंगे तो फिर 12:30 पर। सुबह 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी संग्रहालय से एक भेंट वार्ता, रविंद्र जैन से राधा बिहारी गोस्वामी की बातचीत। सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में नरेश मल्होत्रा का आप गीत सुन सकेंगे। ब्रज माधुरी कार्यक्रम का समय सुबह 7:31 रहेगा। 9:00 विकास पथ में आज आप सुनेंगे एक वार्ता, विषय रहेगा विकसित भारत और युवा कौशल। वार्ताकार होंगे श्री अमित कुमार, आपसे भेंट करेंगे सुरभि शर्मा। कार्यक्रम आबो हवा सुबह 9:25 से प्रसारित किया जाएगा। आज का विषय लेकर आएंगे ई कचरे का बढ़ता खतरा, आलेख और वाचन श्री यतीन्द्र सिंह का रहेगा। ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण सुबह 9:30 से आप सुन सकेंगे। दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय संध्या 7:31 रहेगा। संध्या वंदन आप सुनेंगे संध्या 6:45 से। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुन सकेंगे। सुहाने तरानों का आनंद ले सकेंगे रात्रि 9:15 से। गीत बाद और ऐसे मसीह कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:00।

0: अब तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय लेकर आए हैं कीटनाशी का प्रयोग एवं सावधानियां। जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: भाइयों, आज हम आपको कीटनाशकों का प्रयोग एवं सावधानियां विषय पर जानकारी देंगे। कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अतः कीटनाशक को फसलों में कीट नियंत्रण के लिए काम में लेने से पहले, काम में लेते समय तथा काम में लेने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कीटनाशी को काम में लेने से पहले रखी जाने वाली सावधानियों पर। सबसे पहले कीट को पहचानें या कीट विशेषज्ञ से पहचान करवा लें व पता लगाएं कि वास्तव में फसल को कितना नुकसान हुआ है। जब आर्थिक हानि स्तर का नुकसान पहुंच जावे तभी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। कीट नियंत्रण की सही जानकारी हेतु कीट विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। सिफारिश की गई कीटनाशी का ही प्रयोग करें। कीटनाशी के डिब्बे पर तिकोने आकार में लाल या पीले, नीले या हरे रंग का निशान लगा होता है। जहां तक हो लाल निशान वाली कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

0: लाल रंग वाली से कम नुकसान वाली, पीले रंग की व उससे कम नीले रंग की, और अंत में सबसे कम नुकसान हरे रंग के तिकोने निशान वाली कीटनाशियों से होता है। कीटनाशी खरीदते समय उसके बनाने व काम में लेने की अंतिम तारीख अवश्य देखें। डिब्बों के साथ ऊपर लेबल या सूचना पत्रक आता है, इसे भी पढ़ लें व दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसने वाले या टूटा फूटा स्प्रेयर कभी इस्तेमाल न करें। ठीक प्रकार से शरीर की सुरक्षा हेतु कपड़े पहने, हाथों में रबर के दस्ताने अवश्य पहने। बहुत आदमी को पास में खड़ा न होने दें व मिलाने के लिए लकड़ी का डंडा या लोहे की सरिया काम में लें। भरते समय कीप का प्रयोग करें और घोल को इधर उधर न गिरने दें। लेबल व सूचना पत्रक को पुनः पढ़ें व निर्देशों का पालन करें। कीटनाशी छिड़कने वाले यंत्र की जांच कर लें कि कहीं वो खराब तो नहीं हो गया। त्वचा खास रूप से मुंह और आंखों का कीटनाशी से बचाव रखें। द्रव्य वाली कीटनाशियों को सावधानी से पंप में डालें। चून रूप वाली कीटनाशियों के कण आदि मुंह में न गिरें व गलती से गिर भी जाएं तो तुरंत साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह से धो लें। कीटनाशी मिलाते एवं छिड़कते समय खाना पीना या धूम्रपान करना सख्त मना होता है, इसका पालन करें। यह भी निश्चित कर लें कि कीटनाशी ठीक मात्रा में पानी में मिल गई है या नहीं। कीटनाशी या उसका धुआं श्वसन क्रिया द्वारा अंदर न जाने दें। हवा के विरुद्ध दिशा में चलकर कीटनाशी का छिड़काव न करें। छिड़काव सदा कमर के नीचे करें ताकि कीटनाशक सांस के साथ शरीर के अंदर न जाए। मुंह से हवा लगाकर बंद हुए नोजल आदि की सफाई कदापि न करें। यह सुनिश्चित कर लें कि छिड़काव करने वाली जगह पर तौलिया, साबुन व पानी उपलब्ध हो तथा कपड़ों का भी एक जोड़ा अलग से रखा होना चाहिए। एक दिन में जितनी जरूरत हो उतना ही कीटनाशी काम में लें। फूल आने पर फसलों पर बहुत कम मात्रा में छिड़काव तथा सायंकाल में ही इसका छिड़काव करें ताकि मधुमक्खियों को बचाया जा सके। कभी भी कीटनाशी खेत में एकांत में न रखें व घर पर भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशी काम में लेते समय जहर का प्रभाव यदि शरीर पर होता है तो तुरंत काम बंद कर दें और डॉक्टर के पास जाएं एवं कीटनाशी का डब्बा भी अपने साथ लेकर जाएं। अब बात आती है कीटनाशक छिड़कने के बाद क्या करें। बची हुई कीटनाशी को भंडार में रखकर ताला अवश्य लगा दें। कीटनाशी का घोल कभी भी छिड़काव यंत्र में न छोड़ें। यंत्र को अच्छी तरह से साफ पानी से ठीक तरह से धोकर ही भंडारित करें। खाली डब्बों को अन्य काम में न लें। इकट्ठा होने पर तोड़कर करीब 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर मिट्टी में गाड़ दें। कागज व प्लास्टिक के डिब्बे आदि को जला देवें तथा जलाते वक्त धुएं के पास न खड़े हों। काम में लाए गए कपड़ों व अन्य उपयोग की गई सामग्री को ठीक प्रकार से धोकर रखें। चेहरा व हाथ साबुन से धोने के बाद ही खाना खाएं या पानी पिएं या धूम्रपान करें। कीटनाशी छिड़कने एवं भुरकने के बाद अच्छी तरह से साबुन लगाकर स्नान करके साफ कपड़े पहनें। जो भी कीटनाशी फसलों पर छिड़कें या भुरकें उसका ब्यौरा अवश्य रखना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कीटनाशक छिड़के व भुरके गए खेत की फसल को कोई जानवर या आदमी न खाए। कीटनाशी छिड़कने के बाद कम से कम 6 घंटे की अवधि तक वर्षा हो जाती है तो दोबारा कीटनाशी का प्रयोग करें।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आज का विषय था कीटनाशी का प्रयोग एवं सावधानियां। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलक्का। हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में होंगे संस्कृत में समाचार।

0: विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचनापरियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70.4 लाख करोड़ रुपयाधिकः अस्ति। अवसरेस्मिन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानां उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत् तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वान्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति। अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेश मंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार, निवेश, अंकिकीय परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढ़ीकरण विषये विचार विमर्श कृतः। अनन्तरं साक्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मंत्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मंचम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिम बंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ी नगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम।

अभी आपने सुना सुरैया की आवाज़ में ये गीत फिल्म थी दिल लगी। शकील बदायूनी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत KL सहगल की आवाज़ में, फिल्म शहनशाह से।

शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को अपनी आवाज़ दी गीता दत्त ने। फिल्म थी साहिब बीबी और गुलाम। इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान। अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है।
1: भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकी धाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर में 1,003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें 100% रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।
2: आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
2: प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है।
0: मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में भी 868 करोड़ रुपए लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में जिला प्रशासन तथा मेरठ और सहारनपुर मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री योगी ने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा अफवाहों का समय पर प्रभावी खंडन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाए तथा सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम रहें। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को यात्रा मार्ग गड्ढा मुक्त करने तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और सात्विक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने तथा डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मान

0: मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से अरुण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजा चौसा आमों की पहली खेप निर्यात को कल लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 12 क्विंटल चौसा आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजारों तक हो गई है।
2: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया के बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं।
3: यह सुखद है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर जहां नारी शक्ति भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही। मैं सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
1: प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गोरखपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान। अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
6: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनने वाली सभी भैया बहनन को चंद्रा खत्री की जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रोताओं, हमारो ब्रज अलग अलग रंग बिरंगे रंगों से रंगा हुआ है। यहाँ हर दिन मंदिरन में भक्तन की बड़ी ही श्रद्धा से भीड़ लगे है और अपनी मनोकामना भी पूरी करे हैं। और क्यों ना हो, यहाँ हमारे लल्ला की लीलाएं जो हुई हैं। बिल्कुल सही श्रोताओं, यमुना घाट से लेकर ब्रज की कुंज गलिन में हमारे लल्ला की पग पग पर लीलाएं हैं। और यहाँ जब गोपियाँ पानी भरने के लिए जाती थी तो मटकी फोड़ने की लीला है। बिल्कुल, तो आओ अभी अपने कार्यक्रम में रंगजामा में मटकी फोड़वे को।

कन्हैया मेरी मटकी गिराए गए हो री। बिल्कुल, तो यही तो रंग जमो वा समय में, हमारे लल्ला के समय में गोपिन के संग। तो यार रंगे अपने कार्यक्रम में बिल्कुल फीको ना होने देंगे। हाँ, आपको आज हम सुनवाए रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा सुमन की लिखी ब्रजभाषा हास्य जल की नैनन में फलाने लाल, या कि प्रस्तुति TN शर्मा दे रहे हैं। तो आओ अपने कार्यक्रम को जा हास्य जलकी से रंग जमावें।

0: अपनों ही दाम खोल रो ना हो तो पलखन हारे को कहा दो। अरे नंदलाल, अरे नंदलाल।
1: हाँ भैया, क्या कह रही है?
0: अरे बजमारे, कौन से लोग से बोल रहे हो? है
1: मैया, मैं ऊपर की अदारी पे रहता हूँ।
0: अरे कड़ी खाए नीचे उधर क्या
1: हवा आयो भैया।
0: कैसी हैला से हैला दैन चली जा रही है बजमारी। नंदलाल, अरे वो कड़ी खाए।
1: हाँ भैया।
0: अब नीचे उधर के आवे को कि ना है बजमारे?
1: ले आयो, रियाज कर रहे हो मैया?
0: अरे रियाज तो पीछे करियो, तेरी भौरिया घूबरे से ही न्यार फूस करवे गई है। वो आए गई ना, तेरी और बाकी दोनों की कच्ची रियाज करवाए देगी। मैं चली अपना काम निपटाई।
1: अच्छा भैया,
0: बड़ो आयो रियाज करवे वारो। रियाज भी अटारी पे करे, वो बाप पे गयो है ना बज मारो, वो बड़ो रसियाओ। कितकू गए घर में? कौ है कि ना है? अरे सुन रहे हो कि ना है?

0: अकेला जान के। अरे नीचे उतराओ, अरे बेग आओ।
1: आयो आयो ले आयो, के काम उतरा रहे जी।
0: अरे तुम्हें ऊपर
1: की तैयारी कर रहे हो?
0: अरे सुनो, तुम्हें ऊपर की अटारी पे तानसेन नहीं बनन दूंगी। तानसेन बनो चाहे बेजू बावरा, पर नीचे ही बनो, ना तो मोते जूदो दूधो ना होए।
1: अरे धीरूपनी है, ऊपर बनने में कहा नुकसान? अरे मेरी बात समझ, मोए ऊपर ही आइलैंड है।
0: मोए ना समझ नहीं कछु, तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं पीएल चले जाऊंगी। मोए ना मालूम ही, मोए ना चले कि तुम बाहर ले निकलोगे।
1: तुम्हें मदी भगवान, अरे बात तो बता कि कहाँ है?
0: अरे आके तुम ऊपर कहा करो,
1: कहा करे भगवान? ऊपर है शांति को ठोर, जहाँ मारे महासंगीत की रियाज करूँ। तू मेरी रियाज क्यों भंग करे?
0: जब देखो तब ही भंग की बात, जहाँ भंग नहीं देरी उजाड़ के धर देनी है। जई भंग ने तुम्हारे बाप को बर्बाद कर डालो और तुम जाए के पीछे पड़े हो।
1: पर मेरी बात तो सुनो धीरूपनिया,
0: छाछ चलाए और माखन बेच के सासुर जी घर की रोटी चला रही हैं और तुम निडल्ले बैठ के अब तक कौड़ी पर खाट तोड़ चुके हो।
1: मेरी बात तो सुनो,
0: जब देखो आ

0: प्याज ना है भगवान, रियाज मैं ऊपर रियाज कर रहा हूँ।
1: कैसी रियाज? सिया पोज और इंदल हरन की नौटंकी की तरह आई, जी को इस सॉन्ग को नाम है का?
0: तू तो बहुत देखते बोलू टहल ऊपर ही है। अरे नौटंकी और सॉन्ग है, रियाज ना है के?
1: तो रियाज कहाँ हो है? बताओ क्यों ना है, हम बे तो कहीं है।
0: रियाज यानी साधना। अरे मैं सब कटू त्याग सकूं ते ढूं बनी है, पर यह साधना को ना त्याग सकूं।
1: साधना? कौन सी साधना जी? निवाड़ी साधना को है?

0: जा होरीलाल की छोरी साधना। अरे तो तुम कहूं बातें भी आंख मटकन्ना दो ना करवे लग रहे।
1: राम राम राम। अरे जे तू का कह रही है भाई राम।
0: सामने बहू बैठी रहे बजमारी गाय गाय के कैसे तुम्हें अटारी पे बुलाए रही है। बस ओ मेरे नैनन में फलाने लाल। बस ओ मेरे नैनन में फलाने लाल।
1: अरे मेरी बात तो सुन भगवान मेरी तो सुन ले।
0: अरे आज तो बजमारी भूवर से ही गा रही है। बस ओ मेरे नैनन में फलाने लाल गाय गाय के तुम्हें

0: बनिया दी नेक्टा सुन ले चवे बारा रही है
1: चौं जी जाके ऐसे कितने बड़े हैं जाके नैना जो तुम्हें अपने नैनन में बसाए लेगी नैना ना भाई दो हवेली है कहीं जाके कि एक में तो किराएदारन में बसाए लेगी और दूसरे में ऐसे लगे जैसे तुम्हें बा में बसानो चाहे
0: अरे मेरी बात तो सुन भगवान चोल टोल तो कह रही है
1: मैं तो आज ही पाती पठा के अपने बहनों को बुलाऊंगी मैं तो कहूँ कि आजकल अटारी में बैठ के चोट डांसन बनो जा रहा है
0: रूबे मती अरे रूबे मती बढ़िया मेरी बात है समझ
1: अरे जी सब भाई साधना के मारे है रो है बसो मेरे नैनन में फलाने लाल नैनन में बसेगी मेरी जूती
0: अरे नेक्टा सुन ले दिल बनिया
1: अरे सुन सुन के मेरे कान पक गए सुन तो आज ये दिन आ गयो कि सात फेरन बारिया छोड़ के तुम बसो मेरे नैनन के फलाने लाल बारी से आके मिलावे लग रहे हो अब ना सुनूंगी तुम्हारी ये कहूँ तार दे के दद्दू बुलाने जा रही हूँ
0: ऐसा मत करिए भगवान पल्ले जाएगी पल्ले
1: अरे पल्ले मैं कर रही हूँ कि तुम
0: बहुत दिखावे लायक ना रहूँगा
1: अरे रात को सपने में मैंने जाई देखो
0: भगवान अब सपने में तेरे कहा देख ली ना
1: सपने में मैंने तुमको अरे भाई साधना ते गुर गुर के बातें कर रहे देखो
0: अरे भगवान सपनों तेरे देखो कि मैंने तेरे सपनों देखो तो जाना मेरा का अपराध है
1: अरे अपराध कैसा ना है अपराध कैसा ना है मेरे सपने में जब तुम बात निगोड़ी थे घुर घुर के बात कर सको तो अपने सपने में तुम बातें काका ना करते होगे
0: रूबे मती दे बनिया दे दे मैया आमती होगी शांत है जा
1: हाँ तो सांस सांस बताओ कि तुम्हारी बात साधना से का संबंध है नहीं कहूँ झूठ बोले गरे में फंदा डाल के लटक जाऊंगी
0: ना ना ना गरे फंदा मत डालियो ना तो तेरी आत्मा भटको कराएगी बता फिर मैं तो कहाँ ढूंढूंगी
1: मैं जेवरी बांध के लटक जाऊंगी
0: ना भागवा जेवरी तो गरे में चुभेगी जेवरी मत डालियो अरे रेशम की फरिया डाल लीजियो बुला चुभेगी
1: गरे में फरिया डाल के लटकूं तो मेरी तो फिर मेरी आत्मा ना भटकेगी का और फिर कहा ये मोह ढूंढ लोगे का तुम
0: ले फिर मोह का जरूरत है तो ढूंढेगी
1: अच्छा तो बात जा ठोर तक आए पहुंची है कि तुम मोते आती है वे लगे हो अब तलक मैं अपने दद्दू को बुलाती चाहे ना बुलाती पर अब मैं पादरिया के सुल्लू को पियर बेच के दद्दू को आ रही बुलाऊंगी
0: दद्दू का आके मेरा टीका करेंगे भगवान बुद्धि से काम ले बुद्धि से
1: तो बताए तो ना रहे कि तुम्हारी साधना से का संबंध है कैसी लार गिरा रही है तुमको अपने नैनन में बसाए के और कोई नए ना मिले हो जाए अपने नैनन में बसाए के लिए
0: अरे भगवान ने एकता बुद्धि से काम ले
1: तो कब बुद्धि से तुम्हारा कोई सहना देनी है
0: अरे तू जे का लग रही है अरे जी बुद्धि देवी को है मैं ना जानू
1: तो तुम बुद्धि देव को भूल गए अपनी सारी ये भूल गए मेरे चाचा की छोरी को भूल गए
0: अरे तू बुद्धि की बात कर रही है
1: हाँ
0: बात कैसे भूल जाऊंगा
1: हाँ अब तभी कहूँ बाप बुद्धि से का बात चल रही है तुम्हारी पकड़े गए ना जो चोरी ते जाए पर हेरा फेरी ना छोड़ सके
0: अरे तेरी बड़ी बात है कैसी बात कर रही है मोए तो बुद्धि महीना ते ना ही की है
1: तो तुम्हें बुद्धि महीना भर ते ना मिली
0: अरे तू तो महीना की के है मैं तो कहूँ द्वादम महीना ते ना ही देख रही
1: को है अब आई आई अरे आवाज खोलूं अरे जी जी बड़ी अबेर में की बार खोले जीजा है के ना है
2: अरे हैं अरे आजा बुद्धि आ बैठ तो मेरे जीजा कब के मिले
1: वो तो मोर कल ही मिले हैं बम बापे हैं बड़ो अच्छो गीत गाए के बिन्ने मोर बम बापे सुनायो हो तू कोयलिया मेरे वन की
2: जीजा जी ओ जीजा जी
0: अरे अब काफत आ गई घर में ले मारी गई
1: तो अब मैं आफत लग रही हूँ और कल बम्बा पे कैसे जा रहे मुझे देख देख के कोयलिया मेरे बना की
0: अरे बुद्धि तू जो आफत लगेगी आया आ बैठ तू
1: जो आफत लगेगी आफत तो मैं लगवे लगी हूँ उनको
2: क्यों जी जागी जी जी कह कहा रही है
0: अरे सब घर वाला है गया बुद्धि तो कहा और कैसे समझाऊं
1: क्यों जी तुम जो कह रहे

0: मारे गए भगवान तेरे डर के मारे कछु से कछु कह गए हो। देख दुपनिया मोए तो ते बड़ा डर लगे है, तुम्हें माफ कर दो, तेरे हाथ जोड़ू पांच जोड़ू।
1: बता क्यों ना रही है जी, क्यों तुम्हें नैनन में बसानो चाह रही है?
0: अरे दुपनिया तू तो कल से काम ले भला मेरा बात एक कहा ताल्लुक
2: तुम मुझे बुढ़ापे में तलाक देवे का। अरे मेरे फूट गए भाग, अरे मैया काए को गाए।
0: अरे अरे अरे रो मत दुपनिया, रो मत। अरे ना तो मैं उगाए डंगो की काए को ब्याई विदेश बाहुल मेरे।
1: तुम दोनों रो रहे हो, मेरी हो तो सुनो। तुम बता क्यों ना रे कि जी निगोरी तुम्हें नैनन में क्यों बसाना चाह रहे है?
0: तुम तो ठंडे मन से तो सुनो। अरे बात तो जी है कि जी मोए नैनन में ना बसा रही।
2: साफ साफ तो कह रही है कि बसाओ मेरे नैनन में फलाने लाल।
1: जीजा जी वो हिंदी में ही तो गा रही है, अंग्रेजी में तो बोलना ही रही।
0: अरे भाई अपने नैनन में बे मोह नाए बसा रही। अरे वो तो मीरा को गीत गा रही है।
3: मीरा तो तुम मीरा नाम की काउ छोड़ी ते उल रहे हो, तुम कभी ना सुधरोगे। हम तो जा रहे हैं अपने
0: मीरा। अरे सही, अरे मेरी बात तो सुनो।
3: नहीं हो आप साधना और मीरा को बिना तुम अपने में बसा
0: अरे इतना था सही। अरे सुना रही मारा गया ब्रह्मचारी।

तो अभी आप सुन रहे डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा सुमन की लिखी ब्रजभाषा हास्य जल की नैनन में फलाने लाल, या कि प्रस्तुति टीएन शर्मा की थी। तो आओ कार्यक्रम को और एक रंग में रंगें, क्योंकि हम सभी तो श्याम के रंग में रंगे हैं, क्योंकि हमारी तो उनसे लागी लगी है, तभी तो गा रहे हैं हमारे घनश्याम शर्मा मधु भैया कि लागी तुम संग यारी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भाई अपने कार्यक्रम को तो हमने खूब रंगन से सजाए दिए हुए, कभी कान्हा की लट थे तो कभी मुस्कान थे तो कभी हास्य झलकी थे। और साथियों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर हमें बताइए और लिख भेजियो हमारे मैसेज में। तो यही के साथ अपने कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देवे हैं। आप सभी को हमारी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे समाचार।

0: का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं। अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें। जलाशयों से गाद निकालें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत

0: और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हाटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क

0: ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
2: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
6: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने

0: और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
4: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज

अभी आपने सुना लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों को फिल्म मधुमती में। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, संगीत बित किया था सलिल चौधरी ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। अभी आपने सुना लव इन टोक्यो से लिया ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि का।

0: अभी आपने सुना आशा भोसले किशोर कुमार के युगल सुरों को फिल्म लावारिस में। साहिर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे ना ना ना ना ना ना।

0: किशोर कुमार आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म नमक हलाल में। अनजान के इस गीत को संगीतबद्ध किया था बप्पी लहरी ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 9 बज चुके हैं, वक्त है आपके साथ कार्यक्रम शेयर करने का। विकास पथ आज का विषय लेकर आए हैं विकसित भारत और युवा कौशल। वार्ताकार हैं श्री अमित कुमार, आपसे भेंट कर रही हैं सुरभि शर्मा।
1: युवा जिस देश में होते हैं वो देश युवा होता है, उस देश में एनर्जी बहुत होती है। इन युवा को सही दिशा और दिशा अगर दी जाए तो किसी भी देश का भविष्य बदल सकते हैं। भारत भी युवाओं का देश है, उनको भी सही दिशा और दशा देने की जरूरत है। इन्हीं सारे विषयों को लेकर हमने बातचीत करी हमारे साथ।
2: मेरा नाम अमित कुमार है, जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत मथुरा। जैसे कि विश्व युवा कौशल में दो शब्द ये युवा और कौशल, युवा होने के साथ साथ अगर उनके अंदर स्किल्स कौशल भी डाल दिया जाए तो एक कंप्लीट उनको एक्सपोजर मिलता है। जैसे कि ये बदलती दुनिया के साथ अगर आगे बढ़ना है तो हर युवा के पास सही स्किल होना जरूरी है। तो युवाओं को स्किल्स प्राप्त करने के लिए जागरूकता भी होनी जरूरी है, तो युवा कौशल के प्रति, स्किल्स के प्रति जागरूक हो।
1: आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कौशल, स्किल्स, कि कौशल ये स्किल्स, इन शब्दों से हम क्या समझ सकते हैं?
2: कौशल स्किल्स ये इनोवेटिव जो थिंकिंग होती है, या जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने के लिए हमको वो जानकारी कि किस तरीके से कोई मशीन वर्क करेगी या फिर किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, तो हम सिंपली कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसको परचेज कर लेते हैं, परंतु उसके पीछे क्या वर्किंग है, किस तरीके से वो बन रहा है, तो सारा प्रोडक्शन वगैरह का जो भी जानकारी होगी वो बच्चे को हैंडी हो जाएगी, या यूथ को कह सकते हैं हम कि हैंडी हो जाएगी, वो उसको सीख करके वो उसको अपने भविष्य में अपने रोजगार के लिए भी प्रयोग में ला सकते। ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र का जनरल असेंबली होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने 2014 में इसको बदलती दुनिया में देखा कि इस तरीके से स्किल की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। तो युवाओं को अब युवा, अभी पूरा वर्ल्ड ही युवा है, इंडिया तो बहुत

0: आगे हैं। इंडिया की तो 65 पॉपुलेशन जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो 35 ईयर से कम है, 35 ईयर से कम हमारी 65% पॉपुलेशन की है। तो उनके पास वो स्किल्स आ जाना तो उसके लिए इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा वो।
1: कहा जाता है कि युवाओं को अगर कौशल हो, स्किल आता हो तो युवा कुछ भी कर सकता है। अगर हम जानना चाहें शब्द के बारे में और गहराई से, क्या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर एक युवा डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, आईटीआई में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो क्या वो स्किल से जोड़ा जाएगा? या एक युवा जो शायद बीए एमए जैसे हिंदी साहित्य कला क्षेत्र में अगर अपने तो पारंगत कर रहा है,
0: जी
1: क्या उसको भी कौशल से जोड़ा जा सकता है?
0: कौशल से जोड़ना, अब साहित्य वगैरह इसको कौशल से पूरी तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता। जो हमारा आईटीआई आपने जिक्र किया है, आईटीआई बीटेक, कुछ ऐसे स्किल्स जो आज के नए युग में काम आ सकते हैं उनको जोड़ा जा सकता है। पॉलिटेक्निक में भी सिखाई जाती है और बीटेक के टाइम पे लैब में जो एनालिसिस होता है, तो जो प्रयोगशालाएं चल रही है उनको, मतलब यूथ उनको सामने से करके देख रहा है। एक किताबी पढ़ाई हो गई जो मैम आपने बोला है कि बीए एमए ये सब कोर्स कर रहे हैं वो, इवन आईटीआई में भी जब तक वो प्रयोगशाला के अंदर नहीं जाएंगे, अपना मशीनों का यूज नहीं करेंगे, तब तक वो उस स्किल्स को अपने अंदर समाहित नहीं करेंगे। तो वो कोर्सेज स्पेसिफिकली बनी ही स्किल्स के लिए है मैम।
1: यानी कि अगर कोई युवा टेक्निकल ट्रेनिंग ले रहा है, टेक्निकल पढ़ाई कर रहा है, तो हम कह
0: एग्जैक्टली
1: सकते हैं कि वो कौशल स्किल्स सीख रहा
0: हाँ जी जी
1: है।
0: मैम
1: हमारे भारत देश में कौशल विकास को लेकर कुछ कार्य होते हैं, अवसर प्रदान किए जाते हैं।
0: वैसे तो भारत सरकार के द्वारा काफी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि ये पीएम कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें भी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए, इवन भारत में तो उसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो यानी कि हमारे भारतवर्ष के अंदर इसको बहुत महत्वता दी जा रही है अभी, और ये समय की डिमांड भी है अभी कि ये होना चाहिए। और भी स्कीम्स है, विश्वकर्मा योजना भी है, और भी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव कुछ स्कीम्स भी दी जाती है कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप लोग बनाना सीखेंगे तो उसमें भी इंसेंटिव मिलेगा। और इसके बाद युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और भी एक नया डिपार्टमेंट भी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, मेरा युवा भारत, जो हमारा डेजिग्नेशन उसमें जिला युवा अधिकारी का है मैं। तो उससे भी स्किल्स डेवलप करने के लिए युवाओं को जोड़ना, ये काफी कुछ उसमें आया है मैं।
1: जब कोई युवा कोई कौशल या स्किल सीखने जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा हो जो तो टेक्निकल पढ़ाई कर सके। क्या ये सारी पढ़ाई निशुल्क होती है या कुछ ऐसा स्कॉलरशिप उनको मिलती है जिससे वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सके, किसी स्किल में अपने को एक्सपर्ट बना सके, ताकि आने वाले समय में वो अपने अच्छे से जीवन का निर्वाह कर सके?
0: बहुत से प्रोग्राम पेड भी होते हैं, और ज्यादातर जो हमारे सरकारी प्रोग्राम होते हैं वो निशुल्क होते हैं। सरकार चाहती है कि युवा स्किल्स सीखें। इवन कुछ प्रोग्राम तो ऐसे भी हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले ही काफी न्यूज में रहा था पीएमआईएस, ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। इसमें तो युवाओं को इंटर्नशिप के में कुछ पैसा भी, इवन ऑनोरेरियम भी दिया जा रहा था कि 8-9 हजार रुपए कि आप लोग रहेंगे और मंथली आपको इतना भी मिलेगा, और वो 6 मंथ, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन का कोर्सेज उसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि बीपीसीएल हुआ हमारा मथुरा में, बीपीसीएल, इवन और भी रिफाइनरीज जो भी है, पीएसयूज जो होती है वहां पे बच्चों को, यूथ को हमारे स्किल्स देने का प्रावधान पीएमआईएस स्कीम के थ्रू भी हुआ है मैम।
1: कोई बच्चा अपने कौशल का विकास कौन सी क्लास के बाद कर सकता है? पहली के बाद, दूसरी के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद? कब उसे लगे कि हाँ, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद अब मुझे कुछ टेक्निकल सीखना है या अपने कौशल को विकसित करना है?
0: वैसे ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। इवन जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें तो, जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि बैगलेस, मतलब स्कूल के अंदर बैग नहीं ले जाना होगा कुछ डेज पर, तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही वो स्किल्स दी जाए, मतलब ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए। ऐसा कुछ कंट्रीज में भी चल रहा है मैम, जैसे कि स्विट्जरलैंड है। तो ऐसी जो नया एजुकेशन पॉलिसी चल रही है हमारे देश की भी, तो उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको किसी एक 10th क्लास, 11th क्लास, उसको स्टार्टिंग से ही फेज्ड मैनर में हम लोग डाल सकते हैं धीरे धीरे बच्चों के अंदर, तो वो करिकुलम के ऊपर बेस्ड होगा।
1: किस प्रकार हमें इन सब चीजों से जुड़ना चाहिए, कैसे लाभ उठाएं, ऐसे कौन से पोर्टल्स हैं, ऐसे कौन से ऑफिसेज हैं, ऐसे कौन से विभाग हैं जहाँ पे जाकर युवा अपने को एक दिशा सही दिशा प्रदान

0: अभी वैसे भारत सरकार की काफी योजनाएं चल रही हैं, और अभी जिस योजना से हम जुड़े हैं, मेरा युवा भारत, ये इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि
1: क्या
0: किस
1: पहले
0: तरीके
1: इसका
0: से।
1: नाम नेहरू युवा केंद्र था?
0: ये नेहरू युवा केंद्र एक डिपार्टमेंट जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ये चल रही थी। अभी माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा एक नए डिपार्टमेंट की रचना की गई तरीके से, जिसमें एक नए नव निर्माण की जो पहल की गई कि अभी यूथ की नई डिमांड्स क्या है, तो एक नया डिपार्टमेंट उसी को भी समाहित करते हुए, मतलब जो जो काम नेहरू युवा केंद्र में चल रहे थे वही काम उसके साथ साथ एडवांस लेवल की चीजें में लाई गई है। मेरा युवा भारत में ये नया डिपार्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया 31 अक्टूबर 2023 को, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। ये मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र का एडवांस लेवल को कहा जा सकता है। तो ये एक नया डिपार्टमेंट,
1: इसके बारे में जानकारी दीजिए।
0: ये स्पेशली यूथ, जो भी हमारा 15 to 29 एज ग्रुप का यूथ है वो इसका मेन बेनिफिशियरी है। मेरा युवा भारत, ये हर जिले में इसका एक केंद्र है। अभी 623 जिलों में इनका केंद्र है, और अभी 150 से प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में और केंद्रीय खोले जा रहे हैं माई भारत के, जहां पर होता क्या है कि एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि हम कोई भी स्कीम अगर लॉन्च करते हैं तो वो केंद्र लेवल से लॉन्च होकर के ग्रास रूट लेवल तक पहुंचानी होती है। तो ये जो हमारा माई भारत है वो हर जिले में अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए सभी यूथ, जो भी 15 से 29 एज ग्रुप का यूथ है, उसको माई भारत प्लेटफॉर्म पर सरकार के द्वारा एक माई भारत डिपार्टमेंट के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है, जिस पर यूथ अपने आप को रजिस्टर्ड करके सभी जानकारी जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं या कोई भी प्रोग्राम्स इंटर्नशिप के भी आ रहे हैं, यूथ वहां से सब ये जानकारी ले
1: क्या
0: पाएगा।
1: कोई ऐसा फोन नंबर, ऐसा पोर्टल, ऐसी वेबसाइट है जिसपे जाकर व्यक्ति अपने को रजिस्टर करवा सके? इसकी
0: यस
1: जानकारी
0: मैम,
1: कैसे मिलेगी?
0: पोर्टल है myBharat.gov.in, उस पर जाकर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा सामने, तो एज ए यूथ खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी एक मास ड्राइव चल रही है ऑल इंडिया लेवल, जहां पर यूथ खुद को 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच रजिस्ट्रेशन ड्राइव चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि 5 करोड़ यूथ इस पोर्टल पर जुड़ जाएं। अभी जो कि संख्या 2.16 करोड़ हो चुकी है मैम, 2023 से अब तक इस पर 2.16 करोड़ प्लस आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना कि अभी बजट के टाइम पे ही वो ज्यादा डिस्कस हुआ था कि 1 लाख युवाओं को यूथ लीडर्स बनाना है, कि वो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा पॉलिटिकल, तो वो किस तरीके से अपने आप को इस समाज के अंदर एक लीडर के रूप में स्थापित कर सके, तो उस विजन को भी पूरा करने में माई भारत का बहुत बड़ा रोल है मैम। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये युवाओं के लिए है। इसमें बहुत से कंपटीशन, जैसे कि VBYLD होता है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, जिसमें युवा डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करते हैं। उनको एक स्क्रीनिंग से गुजरना होता है, जो कि एक क्विज डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होकर के नेशनल लेवल तक वो बच्चे, स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक कंपटीशन में जाते हैं। उसमें ऐसे राइटिंग, अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके का कंपटीशन होता है, और वे अंत में प्रधानमंत्री जी के साथ डायरेक्ट संवाद करते हैं। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि एक ग्रास रूट पर बच्चा, जो यूथ है हमारा 15 to 29, वो डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रधानमंत्री जी तक डायरेक्ट संवाद कर सकता है जाकर के।
1: क्या ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क है या कुछ शुल्क लगता है, या कोई राशन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है?
0: बिल्कुल निशुल्क है, इसमें कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं है। यूथ अपने आप को डायरेक्टली, जैसे कि आप देखा होगा कि आजकल यूथ सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता है, फेसबुक अकाउंट बनाता है अपना, तो इसी तरीके से एक अकाउंट बनता है, उसको ईमेल आईडी से बना सकते हैं, उसको फोन नंबर से बना सकते हैं। सिंपली फोन नंबर ईमेल आईडी डाल करके उस पर ओटीपी आएगा, खुद को रजिस्टर करेंगे भारत सरकार के मेरा युवा भारत पोर्टल पर, और रजिस्ट्रेशन के बाद उनका एक पेज क्रिएट हो जाएगा, और उस पेज पर इवन वो अपनी जो सोशल एक्टिविटीज, अपने गांव में, अपने शहर में, कहीं पे भी कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको भी उस पोर्टल पर वो अपलोड कर सकते हैं, तो वो आगे नेशनल लेवल तक वो एक्टिविटी भी दिखाई देगी। तो ये मैं प्रावधान है उसमें एज ए यूथ के बाद।

0: एक और ऑप्शन है कि वो एज ए यूथ क्लब भी रजिस्टर हो सकते हैं यहाँ पे। ये यूथ क्लब के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा।
1: जी
0: एज ए सिंगल युवा, जैसे कि हम जानते हैं कि एक लकड़ी होती है इजिली टूट जाती है वो, और जब एक साथ चार पांच लकड़ियों को हम एक साथ मिला करके तोड़ना चाहेंगे वो नहीं टूट। तो ऐसे ही जब सिंगल यूथ मल्टीपल एक यूथ के ग्रुप में बंध जाता है तो वो एक सशक्त हो जाता है। तो एक ऐसा ग्रुप बना करके बच्चे खुद को एज ए यूथ क्लब माई भारत पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद वो कोई भी, जैसे भारत सरकार के अभियान चल रहे हैं, सफाई अभियान चल रहे हैं, वो एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनकी मदद कर करके एक अच्छा संदेश देंगे कि युवाओं के अंदर एक पॉजिटिव भावना आएंगी। ये जब एक्टिविटीज करेंगे उनका अच्छे से एक PDF बना करके, कुछ फोटोज लेकर के वो दिखा सकते हैं कि हमने अपने गांव में इस तरीके से ये अच्छा काम किया है, तो वो और युवाओं के बीच बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वहां पे वो यूथ क्लब अपनी सारी एक्टिविटीज को शो कर सकता है, शोकेस कर
1: इस
0: सकता
1: बार की जो थीम डिसाइड हुई है, निर्धारित की हुई है, साझा
0: है।
1: भविष्य के लिए कौशल।
0: साझा भविष्य के लिए कौशल, शेयर्ड फ्यूचर की बात हो रही है। अब अगर स्किल्स नहीं होगी, क्योंकि आज की डेट इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है चारों ओर, तो अगर मैम फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमको इतनी स्किल्स अपने पास होने चाहिए कि हम उन स्किल्स के थ्रू अपना फ्यूचर मैम फिर से फ्यूचर रेडी खुद को रखें।
2: अभी आप सुन रहे थे विकास पथ, आज का विषय लेकर आए थे विकसित भारत और युवा कौशल। वार्ताकार थे श्री अमित कुमार, आपसे भेंट कर रही थी सुरभि शर्मा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में होगी जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फरुखाबाद और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
1: प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बीते दिनों फरुखाबाद जनपद का एक दिवसीय दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं तय समय में पूरी कर ली जाएं, किसी भी तरह की समस्या होने पर उन्हें अवगत कराया जाए, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा लोक सेवा में 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करती है,
2: विकास के लिए संकल्पित होकर के काम करती है और कभी भी कोई खेल का चुनाव हो, देर का चुनाव हो, अलग से तैयारी महसूस नहीं करती, क्योंकि हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के अपने अपने जांच का निर्वहन करते हैं।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने जनपद में संचालित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज एवं कोल्ड स्टोरेज में फायर सेफ्टी के इंतजाम चेक करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फायर सेफ्टी अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही ये भी बताया कि नोटिस देकर इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नक्शे भी चेक कराए जाएं।
3: जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फायर टेंडर की मूवमेंट की जगह नहीं है या फिर जो मानक के विपरीत बनाए गए हैं, उनका पूरा सघन अभियान चला के सर्वे कर लें और जो बिल्कुल मानक के विपरीत है उनको नोटिस देके पहले पूछा जाए, नक्शा पास कराया गया है नहीं, तत्पश्चात कार्रवाई की जाए।
1: पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा लोगों के चोरी एवं खोए हुए 125 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वापस किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फतेहगढ़ जनपद पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त प्रयास से मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वितरित किए गए। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। वहीं अपने चोरी एवं खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फरुखाबाद जनपद में 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2026 का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने किया। जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। जन सहभागिता से अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया। संचारी रोगों के प्रभावी रोकथाम, स्वच्छ वातावरण के निर्माण तथा जन सामान्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह अभियान जनपद में 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि सभी विभागों और प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही संभव है। अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान निर्धारित कार्य योजना के अनुसार सभी गतिविधियों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने दायित्व का गंभीरता से निर्वहन करे ताकि अभियान का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया

0: चिकनगुनिया एवं अन्य संचारी रोगों के बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामुदायिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक स्तर पर एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग स्रोत निस्तारण, साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति एवं 100% कन्विक्शन के तहत जनपद पुलिस ने 6 माह में 304 लोगों को दिलाई सजा। पुलिस ने 212 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर शासन की जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों को सजा दिलाई। पुलिस ने 6 मुकदमों में 16 अपराधियों को कराया आजीवन कारावास। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर हुई कार्रवाई पर मीडिया को जानकारी दी।
1: शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जनपद फतेहगढ़ में लगभग पिछले 6 महीने में 212 मुकदमों को चिन्हित किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए लगभग 304 अभियुक्तों को सजा कराई गई है। इनमें से 9 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 16 लोगों को आजीवन कारावास भी हुआ है।
2: फरुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
3: फतेहपुर जनपद में जल संरक्षण एवं तालाब के पुनर्जीवन के उद्देश्य संचालित मिशन 300 अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने विकासखंड एराया के ग्राम पंचायत बुधवन में तालाब के पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाब की और अधिक गहराई तक खुदाई कराई जाए, जिससे अधिक मात्रा में वर्षा जल का संचयन हो सके। उन्होंने तालाब के चारों ओर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराने के भी निर्देश दिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल स्रोतों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता हो सके। उन्होंने कहा कि जनपद में मिशन 300 अभियान के अंतर्गत 240 तालाबों पर पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन कार्यों के जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत सरकार के केस धरन अभियान के उद्देश्यों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित होने पर भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों सहित आम जन को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के 2 अन्य तालाबों के पुनर्जीवन की मांग किया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाबों में यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण मुक्त कराते हुए पुनर्जीवित की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाए।
4: तालाबों का चिन्हांकन कराते हुए इसके ऊपर खुदाई का काम शुरू कर दिया जाए। वन में मिशन 300 के अंतर्गत चिन्हित तालाब को देखा गया, पूरी टीम के साथ तहसील की टीम थी, तो यहां पर खुदाई शुरू हो गई है और इसको और डीप करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा 12वीं वाहिनी पीएसी परिसर में आयोजित 30वीं अंतर वाहिनी पीएसी पूर्वी जोन वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी जोन की विभिन्न वाहिनियों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं शारीरिक दक्षता, मानसिक मजबूती तथा टीम भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा पुलिस बल के कर्मियों को सदैव स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सहायक होती है। फतेहपुर में एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ राज्य मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग कृष्णा पासवान, नोडल अधिकारी डॉक्टर सारिका मोहन और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के वैदिक रीति रिवाज से पूजन कर हरिशंकरी के पौधरोपित कर किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक बारी वाहिनी पीएसी के चयन नायक ने पौधरोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण अवश्य करना चाहिए और पौधरोपण के साथ साथ इसकी देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पौधों की महत्ता सबने देखी है, इसलिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। फतेहपुर जनपद में चल रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मच्छर जनित और मौसमी बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दे रही है। इस अभियान में टीवी कुष्ठ रोग के मरीजों की भी खोज की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश को 2026 में टीवी मुक्त किया जाए, यही वजह है कि इसके उन्मूलन के लिए इसे विभिन्न अभियानों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जहां भी कमी मिलेगी तो जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत 7 से 8 विभाग जुड़े हुए हैं।
5: जो दस्तक अभियान है इसमें घर घर जाके टीम जाएंगी और वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे टीबी है और हमारा कुष्ठ रोग है और कोई बुखार के मरीज हैं, दस्त के मरीज हैं, इन सारे मरीजों की खोज की जाएगी और लाइन लिस्ट करके इन्हें उस इकाई पर संदर्भित किया जाएगा जहाँ पे इनका उपचार हो सकता है। इसमें टीबी भी शामिल है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि टीबी को हमें 2026 तक भारत को टीबी मुक्त करना है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: मीडियम वेव 4.1।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

साथियों, आपके लिए एक विशेष सूचना। आज सुबह 9:30 पर आप सुन सकेंगे ब्रज दर्पण कार्यक्रम में एक विशेष रिपोर्ट। विषय रहेगा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान। जानकारी देंगी श्रीमती अनिता सिंह।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम आबो हवा। कार्यक्रम आबो हवा में आज का विषय लेकर आए हैं ई कचरे का बढ़ता खतरा। आलेख व वाचन श्री यतीन्द्र सिंह का है।
1: श्रोताओं, आपने कभी गौर किया है कि कबाड़े वाले को आप और हम जो घर का कबाड़ बेचते आ रहे हैं उसमें अब पुराने अखबारों, बोतल डिब्बों, लोहा लक्कड़ के साथ एक और खतरनाक चीज जुड़ गई है जिसे हम ई कचरा कहते हैं। हमारा कंप्यूटर अगर पुराना हो जाए तो उसे अपग्रेड करना हमें झंझट लगता है। इससे अधिक सरल हमें लगता है कि हम एक नया कंप्यूटर ही खरीद लें। लेकिन तकनीक के साथ कदमताल के इस जुनून में एक पल ठहरकर क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे पुराने पीसी का क्या होगा? पीसी ही क्यों, आज हम मोबाइल, सीडी, टीवी, एसी जैसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गए हैं उन्हें बदलते हुए हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन पुरानी सीडी व दूसरे ई वेस्ट को डस्टबिन में फेंकते समय हम कभी गौर नहीं करते कि कबाड़ी वाले तक पहुंचने के बाद यह कबाड़ हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पहली नजर में हमें ऐसा प्रतीत भी नहीं होता। बस यही है ई वेस्ट का साइलेंट खतरा। लोगों की बदलती जीवन शैली और बढ़ते शहरीकरण के चलते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज्यादा प्रयोग होने लगा है, मगर इससे पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे के दुष्परिणाम से हम लोग बेखबर हैं। ई कचरे से निकलने वाले रासायनिक तत्व लीवर, किडनी को प्रभावित करने के अलावा कैंसर, लकवा जैसी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। ई वेस्ट से निकलने वाले जहरीले तत्व और गैसें मिट्टी व पानी में मिलकर उन्हें बंजर और जहरीला बना देते हैं। फसलों और पानी के जरिए ये तत्व हमारे शरीर में पहुंचकर बीमारियों को जन्म देते हैं। भारत में यह समस्या 1990 के दशक से उभरने लगी थी और उसी दशक को हम सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति का दशक भी मानते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि ई कचरे का उत्पादन इसी रफ्तार से होता रहा तो कुछ सालों में भारत 8 लाख टन ई कचरा हर वर्ष उत्पादित करने लगेगा। ई कचरे की वजह से पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ रही है। ई कचरे के आधे अधूरे तरीके से निस्तारण से मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल जाते हैं जिनका असर पेड़ पौधों और मानव जाति पर पड़ रहा है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है जिसका सीधा असर वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रतिशत पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ रासायनिक तत्व जैसे पारा, क्रोमियम, कैडमियम भूजल पर भी असर डालते हैं। जिन इलाकों में अवैध रूप से रिसाइकलिंग का काम होता है उन इलाकों का पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। असल समस्या ई वेस्ट की रिसाइकलिंग और उसे सही तरह से नष्ट करने की है। घरों और यहाँ तक की बड़ी कंपनियों से निकलने वाला ई वेस्ट ज्यादातर कबाड़ी उठाते हैं। वे इसे या तो किसी बड़े गड्ढे में डाल देते हैं या फिर कीमती मेटल बनाने के लिए इसे जला देते हैं, जो कि और भी ज्यादा नुकसानदेह है। कायदे से इसके लिए पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए। हमारे देश में कुल ई वेस्ट का 99% हिस्सा न तो सही तरीके से इकट्ठा किया जाता है और न ही उसकी

सही तरीके से रिसाइकलिंग होती है। आमतौर पर सामान्य कूड़े कचरे के साथ ही इसे जमा किया जाता है और अक्सर उसके साथ ही इसे फेंक भी दिया जाता है। ऐसे में इनसे निकलने वाले हानिकारक रेडियो एक्टिव और दूसरे हानिकारक तत्व भूमिगत जल और जमीन को प्रदूषित करते हैं। ऐसे में सरकार को ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए कानून बनाना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में खतरा और भी बढ़ेगा। कबाड़ी ई वेस्ट को धातु गलाने वाले को बेचते हैं, जो तांबा और चांदी जैसे महंगे मेटल निकालने के लिए इन्हें जलाते हैं या एसिड में उबालते हैं। एसिड का बचा पानी या तो मिट्टी में डाल दिया जाता है या फिर खुले में फेंक दिया जाता है। यह सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में रिसाइकलिंग करने के लिए न तो कोई साफ कानून है और न ही दिशा निर्देश को फॉलो करना अनिवार्य है। ई कचरे के दुष्परिणाम से कोई भी अनजान नहीं है, मगर अभी तक इसे रोकने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। ई वेस्ट से निपटने के लिए हम हाड़ौती क्षेत्र के निवासियों के लिए मूल मंत्र है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग का, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स को संभलकर और किफायत से इस्तेमाल करें, पुराने आइटम को जरूरतमंद को दे दें या बेच दें, और जिन चीजों को ठीक न कराया जा सके उन्हें सही ढंग से रिसाइकल करवाएं।

0: कार्यक्रम आबोहवा में आज का विषय लेकर आए थे ई कचरे का बढ़ता खतरा। आलेख व वाचन श्री यतीन्द्र सिंह का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत है ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण।

ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर हम अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उन्हें अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जीवन को एक अच्छे और सुंदर ढंग से जीने की प्रेरणा मिलती है और हमारी सोच और व्यवहार में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसे विचारों को अपने जीवन में अपनाते रहें। तो हम भी कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे ही सुविचार के साथ करते हैं और आज का हमारा सुविचार है कि छोटे प्रयास बड़े परिणाम। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर व्यक्ति एक छोटी सी शुरुआत से ही बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, एक एक ईंट से भव्य भवन तैयार हो जाता है और एक एक दिन की मेहनत से किसी व्यक्ति को एक बड़ी मंजिल हासिल होती है। यदि एक विद्यार्थी प्रतिदिन केवल एक घंटा मन लगाकर अपनी पढ़ाई करे तो वर्ष के अंत तक उसका ज्ञान कितना बढ़ जाएगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोज़ सिर्फ आधा घंटा व्यायाम करे तो कुछ ही महीनों में उसके स्वास्थ्य में एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगता है। यदि हम प्रतिदिन एक पौधे को पानी दें और उसकी देखभाल करें तो वही पौधा कुछ वर्षों बाद घना पेड़ बनकर हमें छाया, फल और स्वच्छ हवा देता है। जीवन में छोटे छोटे कार्य

बड़ा बदलाव ला सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, सड़क पर कचरा ना फैलाना, पानी और बिजली की बचत करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, या घर के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना, ये सभी छोटे छोटे प्रयास हैं, लेकिन इनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। और इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। किसी ने एक विचार रखा, किसी ने पहला कदम उठाया और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया और परिणाम स्वरूप समाज में एक नई सोच और नई दिशा का जन्म हुआ। मित्रों, याद रखिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का ही परिणाम होती है। इसलिए यदि कभी आपको ये लगे कि हमारा प्रयास बहुत छोटा है तो निराश मत होइए, हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल की ओर निकट ले जा रहा है। छोटे छोटे कदमों से लंबी यात्राएं पूरी होती हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है और छोटे प्रयास ही एक दिन बड़े परिणाम बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं।

0: Diego, ¿qué fue?
1: श्रोताओं, विधि का अपना एक सुप्रतिपादित सिद्धांत है कि देरी से मिला न्याय न्याय नहीं होता। वास्तव में न्याय की सार्थकता तभी है जब न्याय सरल हो, सुलभ हो और बिना देरी के हर व्यक्ति को सही समय पर मिले। इसी अवधारणा को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय मथुरा, उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा

0: प्राधिकरण द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। आज इस विशेष अभियान को लेकर हमें जानकारी दे रही हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की सचिव श्रीमती अनीता सिंह जी।
1: ये कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सालसा के डायरेक्शन में आयोजित किया जा रहा है, जिसको राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत सिविल कोर्ट में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले, जैसे वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, चेक वाउंस के मामले, वाणिज्य विवाद मामले, सेवा विवाद से संबंधित मामले एवं शमनीय अपराध मामले, उपभोक्ता विवाद मामले, ऋण वसूली के मामले, बंटवारा संबंधी मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले एवं अन्य सभी प्रकार के सिविल मामले आते हैं, जिसके अंतर्गत यदि पक्षकार समझौता करना चाहते हैं और आपस में समझौते के आधार पर मामला खत्म करवाना चाहते हैं तो वो उक्त न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय को इस संदर्भ में एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं।
2: इस प्रकार के जो मामले हैं तो क्या उनमें जो निर्णय दिए जाएंगे तो क्या वो ठीक लोक अदालत जैसे होंगे जिनकी की बाद में कोई अपील ना हो?
1: जी, ये एक तरीके से लोक अदालत वाले ही निर्णय होंगे, जैसे कि लोक अदालत वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है, उसी प्रकार ये माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन में इस तरीके से आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम है कि लोगों के बीच मध्यस्थता के आधार पर अधिक से अधिक मामले निस्तारित हों और लोग समझौते के आधार पर विवाद को समाप्त कर।
2: अभी इस अभियान की शुरुआत कब से हुई है?
1: इस अभियान की शुरुआत विगत अप्रैल माह से शुरू हुई है और ये अभी पूरे वर्ष जारी रहेगा और अभी तक इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर मीटिंग ली जा चुकी है, जिसमें समय समय पर हमें डायरेक्शन प्राप्त होते रहते हैं और हम उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कंटिन्यू जनता से अनुरोध करते हैं कि इसके संदर्भ में अपने जो मामले सिविल कोर्ट में लंबित हैं उन मामलों में उपस्थित होकर जो जैसे पहले बताए गए हैं उनको समझौते के आधार पर समाप्त करा सकते हैं।
2: हम देख रहे हैं कि न्यायालयों में जो मामलों की पेंडेंसी बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और इससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी का भी सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो पक्षकार हैं उनको न्याय मिलने में देरी होती है, तो जब इस तरह की पहल की जो शुरुआत की गई है तो इसका क्या असर देखने को मिल रहा है?
1: जी, आपका ये बिल्कुल कहना सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यायालयों पे अत्यधिक बोझ है, तो जो मामले समझौते के आधार पर और जैसा कि सूची अभी बताई गई, जो आपको वैवाहिक विवाद से संबंधित, दुर्घटना दावे से संबंधित मामले हैं जिनका समझौते के आधार पर निपटारा हो सकता है, तो अगर उनको समझौते के आधार पर निपटारा कर दिया जाए और मामले जल्दी से जल्दी डिसाइड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पेंडेंसी कम होगी कोर्ट की, तो इसीलिए अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण हो सकेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार और माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और समय समय पर सालसा व नालसा के द्वारा डायरेक्शन देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित करता रहता है।
2: जो अगर दीवानी के मामलों के संबंध में बात करें तो जहां भूमि को लेकर या अन्य विवाद इस तरह के चलते हैं जहां भारी भरकम कोर्ट फीस भी जमा हो जाती है, अगर यहां मामला निस्तारित होता है तो क्या पक्षकारों को कोर्ट फीस भी वापस किए जाने का प्रावधान है?
1: जी, जो समझौते के आधार पर मामले डिसाइड होते हैं, ये मध्यस्थता अभियान कंटिन्यू चल रहा है, तो इसके अंतर्गत आपकी कोर्ट फीस है वो भी वापस होगी।
2: इसमें जो अधिवक्ता लोग हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है?
1: मैं अधिवक्तागण से अनुरोध करना चाहूंगी कि यदि वो इस संदर्भ में ध्यान देते हुए और अपने पक्षकारों से बातचीत करते हुए मामले को आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित करवाते हैं तो ये उनके लिए समय की बचत भी होगी और पैसे की बचत भी होगी और सबसे बड़ी बात मानसिक हरासमेंट की भी बचत होगी। जो व्यक्ति एक लंबे समय तक में को फेस करता है, उसके बाद उसे जो मानसिक वो झेलना पड़ता है, उस चीज़ से भी उसका बचाव होगा। तो मैं अधिवक्तागण से अनुरोध करती हूँ कि वह इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने जो भी क्लाइंट हैं उनको समझाएं, आप विवाद को इस कार्यक्रम के द्वारा कोर्ट में जाकर निपटारा करवा सकें।
2: श्रोताओं, जैसा कि बताया कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत ऐसे सभी मामले जिनका कि राजीनामा के आधार पर 16 समझौते के आधार पर निस्तारण हो सकता है उनको यहाँ निस्तारित किया जाएगा और इसके लिए आप न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से यहाँ मामले को संदर्भित करा सकते हैं। और क्या जानकारी इसके बारे में आप देना चाहेंगे?
1: इसके संदर्भ में आप प्रार्थना पत्र भी दे सकते हैं और न्यायालय स्वयं भी जो भी मामले पाता है तो स्वयं भी रेफर भी कर सकता है। तो कई बार ऐसा सुनने में आया है कि न्यायालय द्वारा जब मामले मध्यस्थता केंद्र को रेफर किए जाते हैं तो पक्षकार उस चीज को समझ नहीं पाते हैं या जानकारी उनको नहीं रहती या अधिवक्ता विरोध करते हैं, तो आप अपने अधिवक्ता से बातचीत करिए और समझाइए कि हम समझौते के आधार पर मामले को निस्तारित कराना चाहते हैं, इसलिए हमारा मामला रेफर किया जाए मध्यस्थता केंद्र के लिए। तो इस चीज़ को समझें कि जब वो रेफर होता है

0: मध्यस्थता केंद्र के लिए, तब अगर वो समझौता होने लायक होता है तो वो समझौते के आधार पर निस्तारित हो जाता है। तो आप अपने वकील साहब से अनुरोध करें कि हम अपने मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा कराना चाहते हैं मामले का, तो वो मामले यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मध्यस्थता केंद्र को रेफर होंगे।
1: और जनपद वासियों से क्या कहना चाहेंगी?
0: जनपद वासियों से कहेंगे कि आप इस संदर्भ में संबंधित न्यायालय से या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर संबंधित मामले के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं और इसमें अधिक से अधिक मामले निपट सकते हैं जो समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं।
1: आज आपने हमारे श्रोताओं को इस महत्वपूर्ण अभियान के बारे में जानकारी दी और उनको जागरूक भी किया, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आज हम आपको कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने जा रहे हैं और ये जानकारी विशेष रूप से हमारी बालिकाओं के लिए है, क्योंकि सरकार द्वारा एक विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 14 से 15 साल की बालिकाओं के लिए HPV वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है, जो कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाता है। आज इस विशेष टीकाकरण अभियान के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे जनपद मथुरा के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रोहिताश सिंह तेवतिया जी। ये जो विशेष प्रकार का टीकाकरण किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि आपने चर्चा शुरू की कि विशेष टीकाकरण अभियान किया जा रहा है एक नई वैक्सीन के लिए, वैक्सीन का नाम है HPV वैक्सीन। यह वैक्सीन 14 से 15 वर्ष की बच्चियों के लिए निःशुल्क हमारे विभाग में उपलब्ध है। जिस बच्ची ने 14वां बर्थडे मना लिया है और 15वां बर्थडे भी मनाया नहीं है, उस

0: सबके लिए वैक्सीन है, एक ही शॉट लगेगा और एक ही डोज के साथ में, और वो एचपीवी वायरस से सुरक्षित रह पाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, एचपीवी वायरस जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वही मुख्य कारक होता है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लिए। यह भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि महिलाओं में जो दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है। महिलाएं 30 वर्ष से ऊपर जब, और कभी कभी 30 वर्ष के आसपास भी डायग्नोस होता है, और डायग्नोस होने की स्थिति में कभी कभी जब लेट स्टेज में, थर्ड या फोर्थ स्टेज में होता है, तो उनकी मृत्यु का कारक भी बनता है। तो यह अच्छी बात है कि अब हमारे सिस्टम में निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध है इस बीमारी से बचाव के लिए।
1: सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को समझाएं कि ये क्या होता है।
0: दरअसल सर्वाइकल कैंसर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसकी वजह से होता है। उसके दो स्ट्रेन मुख्य कारक होते हैं इसमें, 16 और 18, और अन्य दो स्ट्रेन भी हैं, 6 और 11, जिनसे वार्ट होता है। तो हमारे पास जो कार्यक्रम में वैक्सीन उपलब्ध है वो इन चारों स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करती है। जैसे गार्डासिल-4 है, ये सिंगल डोज वैक्सीन है, जो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो महंगी वैक्सीन है, अब ये निःशुल्क उपलब्ध है। सर्वाइकल कैंसर जो आप चर्चा करना चाह रहे थे, दरअसल ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चेदानी के मुंह पर जो सेल्स होती हैं वो बदल जाती हैं, और बदलने के पश्चात उसमें हाइपरप्लेजिया होने की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर हो जाता है। और कैंसर होने की स्थिति में फिर वहाँ ब्लीडिंग और अन्य चीज़ें होती हैं। जब जानकारी में आता है, या तो शुरुआत में पकड़ लिया जाए तो अच्छी बात है, अगर लेट जानकारी में आता है किसी भी वजह से, तो वो मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारक बनता है।
1: ये जो HPV वैक्सीन 14 से 15 साल की बालिकाओं के लगाई जा रही है, इसके लिए किस तरह से आपकी तैयारी है और किस तरह से ये बालिकाएं इसका लाभ ले सकती हैं?
0: HPV वैक्सीन के लिए हमने सत्र आयोजित करना स्टार्ट कर लिया है। हमारे यहाँ जिला महिला चिकित्सालय में प्रति दिवस में यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम उपलब्ध है। इसके लिए बच्चियाँ अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल के माध्यम से कर सकती हैं, जिसमें आधार से ऑथेंटिकेट करते हुए, और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं स्लॉट में। जिस तरह से पहले कोविड के समय में, कोविड में टीका लगवाने से पहले स्लॉट बुक करने का व्यवस्था थी, उसी प्रकार से एचपी वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट की बुक करने की व्यवस्था उपलब्ध है। तो यूविन पोर्टल पर अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराते हुए नज़दीकी जो भी उसमें सत्र आयोजित हो रहे हैं वहाँ अपना अपॉइंटमेंट लेकर टीका कर सकती हैं।
1: क्या इसमें केवल 14 से 15 साल की बच्चियां ही लगवा सकती हैं या इससे कम या थोड़ी इससे अधिक उम्र की बच्चियां भी इसका लाभ ले सकती हैं?
0: देखिए, इसमें शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें गाइडलाइन में विधिवत इसका रूपरेखा रखी गई है। उसमें जिस बच्ची ने 14वां बर्थडे मना लिया है, 14 ईयर की हो गई है लेकिन अभी 15 ईयर की नहीं हुई है, तो यह उन्हीं के लिए व्यवस्था है। लेकिन जो बच्ची 15 ईयर की हाल फिलहाल में हो गई है और 90 दिन के अंदर उसने 15वां बर्थडे मनाया है, तो उसके लिए भी व्यवस्था इसमें है। लेकिन जो बच्ची 14 साल से कम उम्र की है तो उन्हें फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब वो 14 ईयर्स की होंगी भविष्य में तो उनके लिए भी टीकाकरण उपलब्ध रहेगा।
1: तो इसके लिए हमारे जनपद में क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
0: हाँ, इसमें जो राज्य स्तर से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें हमें 31,436 बच्चियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके सापेक्ष में 7,880 डोज हमें प्राप्त हो चुकी हैं। हमारे द्वारा यह वैक्सीन सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और हमारे दोनों ही जिला स्तरीय अस्पताल में उपलब्ध करा दी गई है। जिला महिला अस्पताल में विधिवत हमने इसकी शुरुआत कर दी है।
1: तो क्या इसके लिए आधार कार्ड वगैरह लाना अनिवार्य होगा?
0: हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया, यूविन पोर्टल पर जो है इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो उसमें आधार से ऑथेंटिकेट करते हैं। यदि आपको उस पर नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो सीधे हमारे जिला कंबाइंड अस्पताल में वैक्सीनेशन रूम में आधार कार्ड लेकर आ जाएं, तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा टीकाकरण के उपरांत। सभी अभिभावकों से, माता पिताओं से, बच्चियों से यह विनम्र अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आके प्रतिभाग करें इस कार्यक्रम में, और 14 साल की अपनी बच्चियों को टीकाकरण से आच्छादित कर रहे हैं वर्तमान में जिला महिला चिकित्सालय में, और निकट भविष्य में हम अन्य सभी ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी शुरुआत कर लेंगे। यह टीका हमारी बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा सर्वाइकल कैंसर के बचाव में, जो कि एक दूसरा बहुत बड़ा कारक है कैंसर होने का, जो पहला कारक जो है ब्रेस्ट कैंसर का है। तो मेरा सभी श्रोताओं से यही अपील है कि अधिक से अधिक अपनी बच्चियों को टीकाकरण कराएं और उनके भविष्य को सुरक्षित।
1: क्या इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं क्या?
0: इसके साइड इफेक्ट्स हैं नहीं, वैसे मामूली साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो है बच्चे जो है जब आए टीकाकरण के लिए तो अपना नाश्ता करके आए, थोड़ा पानी की बोतल लेके आए। कभी कभी क्या होता है, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन और ये सब थोड़ा एंजाइटी की वजह से दिक्कतें होती हैं, तो वैसे टीकाकरण इसमें बहुत ज्यादा कोई विशेष साइड इफेक्ट्स है नहीं।
1: केवल एक ही वैक्सीन से काम हो जाए, इसके बाद और दोबारा ये वैक्सीन नहीं लगवानी है?
0: सिंगल शॉट वैक्सीन काफी।
1: और क्या कहेंगे?

0: हमारे सभी श्रोताओं के लिए, ऐसी सभी बच्चियों के लिए।
1: मैं पुनः सभी अभिभावकों से, माता पिताओं से, बच्चियों से अनुरोध करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपनी बच्चियों का, 14 वर्ष की बच्चियों का HPV वैक्सीनेशन का टीकरण करवाएं, जो कि हमारे सरकारी सिस्टम में निःशुल्क उपलब्ध है। अगर हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में इसको बहुत महंगी वैक्सीन है, और यह उन बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा, जो एक दूसरी बहुत बड़ी बीमारी है, ना कि उनको शारीरिक एक कष्ट देती है, उनके परिवार पर एक जो वित्तीय एक बोझ भी बनकर उभरती है। तो अधिक से अधिक संख्या में आएं और बच्चियों को टीकाकरण कराएं।
0: जैसा कि HPV वैक्सीन के बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर रोहिताश तेवतिया जी ने, इस वैक्सीन को लगाकर जो हमारी बच्चियां हैं वो आजीवन सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रह सकती हैं, तो ये वैक्सीन उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी अभिभावक हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, वो इस जानकारी को सुन रहे हों तो जागरूक हों और अन्य लोगों को भी जागरूक करें और अपनी 14 से 15 साल की बच्चियों को इस टीकाकरण से आच्छादित करें, क्योंकि ये उनके जीवन की सुरक्षा का सवाल है। इस वैक्सीन का लाभ अवश्य उठाएं। तो आपने हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद।
1: बहुत
2: साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे बस यही अपील करना चाहेंगे कि सड़क पर सुरक्षित चलें और चलने दें, क्योंकि सड़क पर सुरक्षित चलना हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो वाहन पर चलने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई राहगीर हो। अगर हम यातायात सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। जो लोग वाहन चला रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अलावा सड़क पर कोई और भी चल रहा है, इसलिए कभी भी वाहन को लापरवाही से या बिना नियमों का पालन करके नहीं चलाएं, क्योंकि हमारे देश के संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जब तक हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी होती है तो ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये हमारी संवेदनहीनता है। क्योंकि अगर हम सड़क पर तेज गति से लापरवाही से वाहन चला रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो ऐसी स्थिति में वाहन पर नियंत्रण पाना काफ़ी मुश्किल होता है और अक्सर दुर्घटनाएं इसी वजह से होती हैं। लोग जल्दबाजी में वाहन को चलाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सुबह सुबह अपने काम पर जा रहे होते हैं और थोड़ा लेट हो जाते हैं तो हम जल्दी में वाहन को चलाते हैं और ऐसी हड़बड़ाहट में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पहली बार तो प्रयास ये करें कि आप घर से निकल रहे हैं तो सही समय पर निकलें, और अगर आप थोड़ा सा लेट हो भी गए हैं तो वाहन को कभी भी लापरवाही से या तेज़ गति से नहीं चलाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी थोड़ी देरी से इतना नुकसान ना हो, लेकिन जल्दबाजी से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये ध्यान रखें कि भीड़ भाड़ वाले जो स्थान रहते हैं वहाँ पर कभी भी वाहन को तेज़ी से नहीं चलाएं। हर स्थान पर एक गति सीमा निर्धारित रहती है, उस गति सीमा के अंदर ही हमें वाहन को चलाना है, क्योंकि जब हम तेज गति से वाहन चला रहे होते हैं तो उस समय दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और मित्रों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ज़्यादातर लोग वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं या कान में लीड लगाकर ईयरफोन लगाकर वो बात कर रहे होते हैं, और ये भी दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब हम बात करने लगते हैं तो इससे पूरी संभावना रहती है हमारा ध्यान भटकने की। हमारा ध्यान बात करने में लगा रहता है और अचानक कोई व्यक्ति सामने आता है तो हम अपने वाहन में ब्रेक नहीं लगा पाते या अचानक उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सामने वाले व्यक्ति को भी चोट पहुंचती है और हम भी इससे घायल हो जाते हैं। तो इस बात का हमको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आपको वाहन चलाते समय फ़ोन पर अगर बात करनी है तो पहले वाहन को सड़क के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें और उसके बाद कोई भी कॉल हो तभी आप उसको अटेंड करें। और एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी भी जल्दबाजी में वाहन को ओवरटेक नहीं करें। हमेशा ये देख लें कि ओवरटेक करने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं है, या हम ओवरटेक कर सकते हैं, सामने से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है तो तभी वाहन को ओवरटेक करें, क्योंकि जल्दबाजी में ओवरटेक करने की वजह से भी

घटनाएं हो जाती हैं। और हमेशा जो दोपहिया वाहन चालक हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि हेलमेट और सीट बेल्ट ये हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। अगर ईश्वर ना करे यदि आप दुर्घटना हो जाती है और हेलमेट आप लगाए हुए हैं तो आपका जो सर है

0: आप लगाए हुए हैं तो आपका जो सर है, जो कि हमारे शरीर का नाजुक हिस्सा है, वो सुरक्षित रहता है और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार से जो चार पहिया वाहन हैं, वो भी ध्यान रखें कि सीट बेल्ट उनके जीवन की, एक तरह से मानिए कि एक रक्षा पेटी है, इसलिए उसको इस्तेमाल करें। और अब हम बात कर लेते हैं आज की कुछ खास खबरों की। तो आज की खास खबरों में है 2247 मतदेय स्थलों का खाका तैयार हो गया है, कोई नई आपत्ति नहीं आई है और आज अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया पूरी होगी। 30 मतदेय स्थल जर्जर मिले हैं और 1200 मतदेय स्थलों का पुनर्गठन होगा। और ब्रज को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित हम सब ने ठाना है ब्रज को स्वच्छ बनाना है, ये महाअभियानों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो हम आपको बता दें कि आज की तिथि यानी 18 जुलाई इतिहास के झरोखों से ये कहती है कि आज नेल्सन मंडेला दिवस है। ये दिवस मानवता शांति, नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के लिए नेल्सन मंडेला के ऐतिहासिक संघर्ष और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और सन 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और पहला नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई सन 2010 को मनाया गया था। और वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम है कि गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है। तो बस इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति जितेंद्र सिंह की थी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
4: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजे नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और यहाँ तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी। बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद
4: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
5: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती है लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाते थे तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बहके जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था। मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हैं। वही नहर, मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूँ तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूँ। हूँ, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था तो जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं।

0: क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिली तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गाँव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गाँव से और मैंने देखा कि ये मेरे गाँव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इशू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास दो स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे। उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए। तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजते पास हो जाता है, क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए। वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे, पंप सबके घर में समर सर्विल पंप है। एक गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है। सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10000 लीटर में नहा रहा है। और वो ड्रिंकिंग वाटर उसकी कॉस्ट जोड़ 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो, लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे। गांव की जो चौपाल बनी हुई है, चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके मीडिया में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ। हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है। जिस काम के लिए खुद डीएम साहब, कलेक्टर साहब आपके गांव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गांव देखा ही नहीं हमारा और उनको पता चला, देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ। और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूं। वहां से निकल के धीरे धीरे यहाँ तक पॉन्डमैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्डमैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते हो। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे। हमसे यार पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो जीरो एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पर बता सके कि हमने वहां पे किया है उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए, कोई नहीं आया। हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है ना। हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा, वो उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें

0: केमिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
1: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है। तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है। आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके। चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है। उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाते हैं। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है। भैंस चोरी नहीं हुई थी,
0: डूब गई,
1: भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
0: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
1: देखिए, उसके लिए तो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहां पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पूरा पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा, बात तो एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहाँ तक उसको लेके
0: जाए।
1: जी जी, लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ 2-3 तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते, चप्पल, प्लास्टिक, ये सारे हमने क्या है, कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस।
0: अच्छा।
1: ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
0: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट
1: यस
0: कर
1: यस
0: दिया
1: यस
0: है,
1: यस
0: तो ऑटोमेटिकली वो
1: बिल्कुल
0: अच्छे
1: बिल्कुल
0: तरह से, वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप
1: यस यस
0: उसे
1: यस
0: किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस
1: बिल्कुल
0: कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन
1: देखो,
0: होता है?
1: लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है, उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब जाने की फिराक में रहते हैं, और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए, तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई, पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है। डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे, तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के लोग मिलते, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया।

0: किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो। वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पर रह रहे, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इशू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले,
1: वो
0: है ना,
1: कैसे?
0: तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है, तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है, तालाबों से। मछली कहाँ से आती है, तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसीलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी ना किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए, भाई अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए, मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं। तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहां पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते
0: बहुत
1: हैं?
0: अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक यूएसपी है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आइलैंड बनाते हैं, बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आइलैंड बनाने का वो ये है, क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है, इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था, इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ। नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है, वो तो आज भी तालाबों पर उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल, आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आईलैंड और अगली साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर आप वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सक, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी 1 महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था, दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। आप सोचिए, अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने

0: घर वालों को।
1: क्या है, पांच भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ। और मेरी मम्मी बताती है कि हम पांच नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से पांच नहीं रहे, पांच बचे, और पांच जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। पांचों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे। तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11th क्लास में एडमिशन लिया, और मैं कॉलेज गया पहली बार, और जिसने पहली बार एमएनसी में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
0: इतना पढ़ा लिखा और एमएनसी में जॉब करने
1: जबकि
0: वाला।
1: जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे, और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुंच गए चांद पे।
0: प्राउड फीलिंग रही होगी।
1: प्राउड फील कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूं। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था, और मैं जॉब छोड़ने के एक महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था,
0: अच्छा,
1: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
0: तो क्या बताया
1: ताकि
0: नहीं था
1: घर
0: घर
1: वालों को
0: पे?
1: रियलाइज ना हो। और
0: अच्छा,
1: मैं करता क्या था उस बीच, कि कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहां जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहां नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो। तो मैंने कहा
0: अच्छा
1: ठीक है कल छोड़ दो वहां। तो
0: तो
1: मैंने
0: पहले आपने
1: देखा
0: पूरा
1: कि
0: वो भूमिका तैयार की,
1: हाँ,
0: उसके बाद
1: क्योंकि
0: बताया।
1: जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी
0: पूछना
1: साथ
0: होगा।
1: लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो कुछ, ये है घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है। तो
0: ऑब्वियसली लगता है कि बेटा
1: हाँ
0: इंडिपेंडेंट हुआ,
1: बेटा जो
0: जॉब
1: है
0: कर रहा
1: वो
0: है तो।
1: हाँ छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ।
0: टाइप
1: तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूँ तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता
0: पिताजी
1: था
0: तक
1: और
0: ना
1: बोलता था हाँ तुम ले
0: पहुंचे।
1: जाओ अब इसको। तो बिचारी तक नहीं पहुंचता था, लेकिन भाई गाँव में आया तो गाँव वाले खुद ही आ जाते थे, आता तुम्हारे लड़के का।
0: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
1: नहीं मैं तो सुन नहीं पाया था, उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था और
0: अच्छा,
1: बार बार बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे।
0: वाह,
1: तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे
0: यकीन
1: यकीन आया कि
0: आया।
1: हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो ये करते हो,
0: वही लोग
1: तो
0: अप्रिशिएट कर
1: मेरे
0: देते
1: पास
0: हैं।
1: एक जस्टिफिकेशन और आ गया कि
0: हाँ।
1: जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो ये मजाक उड़ाने वाले।
0: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
1: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है, उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
0: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
1: नहीं, मैं तो क्या करता था कि

0: जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए, तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में वो पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए।
1: अच्छा,
0: हाँ, इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए। तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही सेड कि ठीक है भाई, मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं, मेरे साथ के करते हैं ना।
1: अच्छा,
0: मैंने मछली पालन कराया, अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे, दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी, आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहां से आया ये, है ना, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं, अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
1: अच्छा,
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं, छोटे छोटे है क्या। जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ, भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुंदर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता तो छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा।
0: हमने एक गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करना?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गाँव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूँ अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूँ। तो हमारी टीम जाती है, उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गाँव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सिस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गाँव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सिस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहां पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे

0: कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं?
1: देखो, शुरुआत तो घर से होती है। अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ। तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहां पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ कर
0: साफ कर
1: दिया।
0: लिया, बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए
1: हाँ,
0: तो।
1: तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं। एक, आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है। इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे। इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते। छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
0: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी
1: थैंक यू
0: बातें
1: सो
0: बताई
1: मच,
0: जल
1: थैंक यू सो
0: संरक्षण के
1: मच,
0: बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय से एक भेंट वार्ता। भेंट वार्ता है संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से राधा बिहारी गोस्वामी की।

सुने आपने इन गीतों के मुखड़े? तो दोस्तों, इन प्यारे प्यारे गीतों को अपने मधुर संगीत से सजाया है संगीत निर्देशक रविंद्र जैन ने। रविंद्र जैन जी के संगीत में जादू है आपके हमारे यानी कि सभी के मनों को मोहने का। भारत के विभिन्न अंचलों की लोकधुनों को संकलित कर रविंद्र जैन ने उन्हें अनूठे ढंग से अपने संगीत में ढाला है, किंतु विशेषता ये रही है कि वे आंचलिक लोकधुनें उनके संगीत में ढल जाने के बाद भी पूरी तरह मौलिक हैं। सरस्वती के इस वरद पुत्र ने उन्हें जीवंतता दी है, उन्हें एक विशेष स्वरूप दिया है और उनका श्रृंगार किया है अपने मधुर संगीत से।

0: पिछले दिनों श्री जैन जी मथुरा पधारे और उसी समय आकाशवाणी के मथुरा स्टूडियो में भी उनका शुभागमन हुआ। उस समय हमारे प्रतिनिधि श्री राधा बिहारी गोस्वामी ने उनसे बातचीत की।
1: जैन साहब, आज सौभाग्य की बात है कि आप हमारे मध्य हैं, आप हमारे ब्रज के ही हैं, ब्रजवासी हैं। तो मैं आपसे केवल इतना जानना चाहूँगा कि आप एक ब्रजभाषी और ब्रजवासी होने के साथ साथ बॉम्बे कैसे कैसे पहुँचे, आपके शुरू में कैसे पदार्पण बॉम्बे में और फिल्मों में इतनी बड़ी दुनिया में हुआ।
2: मित्रों, ब्रजवासी होना मैं समझता हूँ सबसे बड़े गौरव की बात है और वो गौरव मुझे भी प्राप्त है। मैं सबसे पहले दो लाइन आपको जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही सुनाता हूँ, जिसमें आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।

0: जैन साहब, आपने तो वाकई थोड़ी सी लाइनों में ही पूरी ब्रज की बात बता दी, तो
1: ये गीत मैं अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ फिल्म के लिए। इसका टाइटल भी ब्रजवासी है
0: जी।
1: और हम ब्रज भाषा में ही इसको

0: बनाएंगे
1: ब्रजवासी
0: जी।
1: और इससे पहले भी कई ब्रज भाषा की
0: जी एक ही फिल्म की है, ब्रजभूमि की है। वैसे तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं कोई ना कोई अपने ब्रज के साहित्य से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, उसकी ज़बान में कोई ना कोई बात कहने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा तो बॉम्बे में कैलकटा होके गया हूँ
1: जी,
0: और मैंने जब अलीगढ़ में संगीत की शिक्षा जब मैं ले रहा था
1: जी
0: तो मेरे गुरुजी श्री नाथुराम शर्मा जी ने मुझे कहा कि तुम जब तक अब भ्रमण नहीं करोगे तो तुम्हारी शिक्षा मुकम्मल नहीं होगी, और बाहर जाने से ही उसमें एक्सप्रेशन आएगा, उसमें भाव प्रधान चीज़ है संगीत, तो बाहर देखोगे समझोगे तो तुम्हें कुछ तजुर्बा हासिल होगा। तो मैं बंगाली संगीत के प्रति मेरा बड़ा लगाव था बचपन से,
1: जी
0: खासतौर से टैगोर सॉन्ग, क्योंकि लिटरेचर भी बहुत ज़बरदस्त है वो और ट्यूने भी बड़ी अच्छी हैं, तो वो मैं सीखने कलकत्ते गया।
1: जी
0: और कलकत्ते में ही एक फिल्म प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, मिस्टर RS झुंझुनवाला,
1: जी
0: जिन्होंने मुझे ये वादा किया कि तुम थोड़े दिन यहाँ काम करो और फिर मैं बॉम्बे तुम्हें ले जाऊँगा। तो फिर 69 में फाइनली मैं बॉम्बे चला गया सितंबर को।
1: तो क्या हिंदी फिल्मों से पहले आप बंगला फिल्मों में भी कुछ गा चुके हैं?
0: बंगला फिल्मों में मैंने कंपोज किया है, काम किया है,
1: जी
0: लिखा भी है, गाया भी है। और बंगला समझ लीजिए कि मैं दावा तो नहीं करता लेकिन मातृभाषा की तरह ही बोलता और समझता हूँ उसको।
1: अच्छा, बंगला आप बोल लेते भी हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: समझ भी लेते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तो कुछ कोई बंगाली गीत जो आप हमारे, क्योंकि ब्रजभाषा और ब्रजवासी जो है
0: जी
1: वो दोनों बंगला से मिलते जुलते हैं, तो
0: जी
1: थोड़ा सा कोई मुखड़ा सुनाएं बंगला गीत का।
0: जी मैं आपको ऐसा गाना सुनाता हूँ जो हिंदी में पॉपुलर हो चुका है
1: जी
0: और वो बंगला ओरिजिनल, पहले बंगला मैंने उसको रिकॉर्ड किया था,
1: अच्छा
0: है ना, तो आपको समझ आ जाएगा, तो लोगों को ट्यून सा भी ट्यून से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा।
1: बताइए।

0: सभी जानते हैं जैन साहब के आप अच्छे संगीतकार के साथ साथ अच्छे गायक भी हैं, तो कृपया करके ये बताएं कि फिल्मों में गाने के लिए गायकों को और संगीतकारों को कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए।
1: सबसे पहले तो फिल्म का गाना तो एक माध्यम है, एक विधा हुई। गाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छा गायक, जिसकी फंडामेंटल ट्रेनिंग जो है ना, फंडामेंटल करेक्ट हो
0: जी,
1: क्योंकि धरातल मजबूत होना चाहिए। ठीक है ना, शास्त्रीय संगीत है, लोकगीत हैं हमारे और पारंपरिक चीज़ें हैं, उनकी जानकारी। और फिर हमारे यहाँ सबसे पहले वॉइस क्वालिटी, हमारे जो माइक के थ्रू हम सुनते हैं
0: जी,
1: उसका साउंड का कैसा

0: रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद चूंकि ये भाव प्रधान है तो एक्सप्रेशन लफ्ज़ों को कैसे कहना है, लफ्ज़ों की थ्रो कैसी है।
1: जी
0: हमारे क्लासिकल में बहुत से बड़े बड़े उस्ताद हैं, बहुत अच्छे अच्छा गाते हैं, बड़ी तैयारियां हैं उनकी और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम लाइव म्यूज़िक के लिए उनको बुलाते हैं तो उनको चूंकि अपना रियाज किया हुआ बहुत होता है और कॉपी करने की जो क्षमता है हमारे यहाँ जो सिंगर्स में चाहिए कि जो हमें एक कंपोज़र का गाना गाना है उसको अपने मन को मतलब बिल्कुल इस तरह की जैसे कोई आपने कोई टेप किया हो या रिकॉर्ड किया हो और उसको आपको फिर से वापस बजाना है, उसी तरह उतनी ही मेमोरी उतनी ही क्षमता उसको ग्रहण करने की जो दूसरे की चीज़ है। अपनी चीज़ तो हमें याद रहती है लेकिन किसी को कॉपी करना और उसको सुन के गाना तो ये एक क्षमता चाहिए और एक लफ्ज़ों का डिक्शन बहुत परफेक्ट होना चाहिए और एक्सप्रेशन और वॉइस क्वालिटी, और इन सब चीज़ के लिए सिर्फ 2-4 फिल्मी गाने याद करके जो हमारे पास लोग आ जाते हैं उनको हमें बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं कि उनको हम
1: क्या करें।
0: हाँ उनको कुछ सलाह दें तो वो मानने को तैयार नहीं होते
1: ठीक है
0: और कोई ट्रेनिंग लेके आते नहीं। हम लोगों ने असल में बहुत मेहनत की है, ये सच बात है। हम ये फिल्म में आना तो एक अलग बात हो गई
1: जी,
0: लेकिन उससे पहले हमने बड़ा लंबा रास्ता तय किया है इसके लिए।
1: जैन साहब, रामायण की एक विशेष धुन बचपन से हम लोग सुनते आए हैं और आपने जो रामायण की धुन बनाई वो बिल्कुल एकदम अलग हटके थी
0: जी,
1: और आज भी लोग उस धुन से ज्यादा परिचित हो गए। पुरानी धुन को लोग भूल गए, राधे श्याम की रामायण को नहीं जान पा रहे हैं लोग
0: जी,
1: और
0: जी,
1: नहीं जान पा रहे, इतनी सौभाग्य की बात
0: जी,
1: है।
0: जी, जी,
1: आपने रामायण जैसे सीरियल में भी काम किया है,
0: जी,
1: इस तरह के और किन्हीं सीरियलों में आप आजकल कहीं और?
0: जी मैं अभी कृष्णा कर रहा हूँ इन दिनों
1: जी,
0: क्योंकि राम के बाद फिर कृष्ण जी हैं।
1: जी हाँ, ठीक
0: तो
1: है,
0: राम जी की सेवा हुई है और उसी सिलसिले में यहाँ मथुरा आया हूँ
1: जी,
0: कि कुछ यहाँ की चीज़ें मैं उपयोग में लाऊं। और वैसे तो चूंकि अब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो यहाँ की जो संस्कृति है मैं मुझे सारी मेरे जहन में है, जो मैंने सुनी है जितने दिन यहाँ रहा हूँ वो भूलने का सवाल ही नहीं है, बल्कि उस पर मैंने बहुत काम किया। जैसे आपको मैंने कहा कि गाहे वगैरह जहाँ मुझे चांस मिलता है मैं कुछ ना कुछ यहाँ की बात कहता हूँ। जैसे रामायण का आपने जिक्र किया, रामायण का एक मुझे बहुत पर्सनली गाना पसंद था
1: जी,
0: जो यहीं का गाना है, मतलब यहाँ की हमारी भाषा है, और ये सागर साहब को बहुत पसंद है। अभी भी कृष्णा की सिटिंग में भी कभी कभी हम वो गाना गाते हैं।
1: अच्छा, वो कौन सा गीत
0: तो
1: है
0: पहले तो आपको
1: श्रोताओं
0: हम
1: को
0: वो
1: सुनाए
0: सुनाता
1: थोड़ा
0: हूँ।
1: सा?
0: जी
1: जी,
0: ये भरत जी के पास जब कैकेयी जी आती हैं कि नंदीग्राम में मुझे भी रहने दें अपने साथ, तो वो प्रसंग तो सभी को मालूम है। तो वहाँ हमने बैकग्राउंड में एक गाना रखा था

0: साहब, वाकई
1: जी
0: आपने राम सिंह भेज देरी बन में सुनाकर पूरे ब्रज की बात गहरा दी।
1: जी
0: आपके संगीत में विशेष करके मैंने सुना है और लोगों ने भी देखा होगा कि ज्यादा करके जो लोक संगीत है, चाहे वो बंगाल का रहा हो, ब्रज का रहा हो, वो काफी है। पिछले दिनों एक मैंने सुना था, वो सब्जी के ऊपर आपका बड़ा प्रसिद्ध गीत रहा है, सब्जियों की आपने बड़ी चर्चा की है, इसे भी थोड़ा सुनना चाहेंगे। हमारे श्रोता भी चाहे तो सभी नहीं भूले होंगे।
1: जी जी
0: हाँ, उसके थोड़ी सी बांगी दिखाएं।
1: जी अच्छा, बांगी अच्छा। अभी यशु कुमार जी एक फिल्म बना रहे हैं
0: जी,
1: उसमें अपनी यही की संस्कृत पे है
0: जी,
1: तो उस फिल्म के लिए रिकॉर्ड करूंगा ये गाना। ये असल में हुआ यूं कि मैं और शिव ट्रेवल कर रहे थे, इंदौर से उज्जैन जा रहे थे
0: जी।
1: तो वेजिटेरियन है हम लोग
0: जी,
1: तो एक दिन सब्जियों ने कहा कि भाई तुमने हर एक पे गीत लिखे हैं, लड़कियों पे लिखे हैं, देश पे लिखे हैं, पर्वतों पे लिखे हैं, तो तुम बचपन से खा रहे हो और हमारे ऊपर कुछ नहीं लिखा अभी तक।
0: अच्छा, ये
1: तो
0: बात
1: यूं
0: यहाँ
1: यूं सब्जियों की बात की रिक्वेस्ट पे ये गाना हमने लिखा।
0: वाह,
1: तो अभी रिकॉर्ड करना है मुझे गाना
0: जी।
1: तो सबसे पहले, चूंकि अब आलू के साथ बहुत सब्जियों का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, तो दुआ सबसे पहले उन्हीं को समर्पित किया है,
0: आलू को।
1: जी हाँ। धरती के नीचे उगे और हुए विश्व विख्यात, और

मित्रों, रविंद्र जैन के लिखे और संगीत निर्देशित गीतों में मंगल संदेश है गुनगुनाते हुए गीत गाते हुए चलने का।

अभी आप सुन रहे थे संगीतकार गीतकार स्वर्गीय रविंद्र जैन से राधा बिहारी गोस्वामी की बातचीत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: राम दीदी पियानो कौन बजा रहा है? तुम बंद करो इसे, मैं कहती हूँ बंद करो इसे। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा।
1: हमारे बीच कुछ नहीं रहा?
0: क्या हक है तुम्हें मेरे ही घर में घुस के मुझे सताने का?
1: तभी तो तुम तक मेरा जुनून, मेरे प्यार का पागलपन पहुँचेगा।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में फिल्म दिलवाले का ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम शवर ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से। संगीत विशाल शेखर का है, स्वर विशाल ददलानी का है।

उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म दहक का ये गाना। संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म अंदाज का ये गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना। फिल्म का नाम था आपको पहले भी कहीं देखा है। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत निखिल विनय का था। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वरों में फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत उत्तम सिंह का है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म हकीकत का ये गाना, जिसे लिखा था अनवर ने, संगीत दिलीप सेन और समीर सेन का था। और आइए अब सुनते हैं सोनू कक्कड़ को फिल्म जिस्म में। वो लिखे हैं मिथुन ने, संगीत भी मिथुन का ही है।

अभी आपने सुना फिल्म जोड़ी नंबर वन का ये गाना, और इस गाने को गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने। बोल लिखे थे सुधाकर शर्मा ने, संगीत हिमेश रेशमिया का था।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के गाए फिल्म जुड़वा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम गीत बात और SMS सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम गीत बात और SMS के लिए जो संदेश सबसे पहले हमारे पास आया है वो आया है पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। और ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया और इनके सभी संगी साथी। ये फरमाइश हमारे पास आई है नरवेल जिला बुलडाणा से PS नवानकर, निर्मला, विशाल, सोपान, ताइड़े, नारायण इंगले और आशीष मोहरकर। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अगली फरमाइश हमारे पास आई है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुहन जोशी, नसीब रेडियो सोता शंग, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर और जिया हुलक डावर। ये SMS हमारे पास आया है दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का। ये संदेश हमें लिख भेजा है एटा उत्तर प्रदेश से M फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुल फराज और बेबी मुस्कान ने। अगला संदेश बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश और प्रमिला बंछोर का। ये फरमाइश आई है हमारे पास सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, प्रिया, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छेलाल, बुल्कीवाली और फलना झा। अगली फरमाइश बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। अगली फरमाइश जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया की। ये संदेश हमें लिख भेजा है महसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मजनू का टेला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना MP से उमंग और आकांक्षा मलिक की। ये संदेश हमें लिख भेजा है रंगोली राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप, गोदावरी, राजबहादुर, शंभू शाह, रजनी सिंह, सागर बाबू, जय और वीरू ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में फिल्म सुहाग का ये गाना।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए ये संदेश लिख भेजा है फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन, अमन पाराशर, आराध्या और लल्लू पंडित ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं काटा रोड वाशम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेश, सुषमा परिधि और मायरा सुरेश। अगला संदेश हमें लिख भेजा है बुलडाणा महाराष्ट्र से वासुदेव वोदवड़े, अनीता, रमेश राव गोठाड़े ने। ये संदेश हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा का। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है कोटवार नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील, बब्बू, डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी ने। अगला संदेश हमें लिख भेजा है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा और प्रथमेश पाटिल ने। ये संदेश हमारे पास आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य राजा, मेघा। चंडीगढ़ से लिखने वाले श्रोता राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना। ये संदेश शार्दुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। अगली फरमाइश भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा की। ये संदेश हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा ने। अगली फरमाइश आई है तेलंगाना चोटुपल से कस्तूरी रामुडू, वुमा देवी और पृथ्वी नारायण की। ये संदेश झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत का। अगली फरमाइश लिख भेजी है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राकेश सेन, सुरेखा सेन और शुभम और अक्षय ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्रा देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन और हिंश कुमार चंदन ने। ये संदेश जिला नांदेड़ कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर और इनके सभी संगी साथियों का। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ये संदेश सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक, शेरी वंडेर, अकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर का। अगली फरमाइश हमारे पास आई है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और शव्या रामटेके की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और इनके सभी संगी साथी। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म चिराग का ये गीत।

ये अगला संदेश हमें लिख भेजा है जवाहर नगर दुर्ग से लिखने वाले श्रोता आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और पिपुल कामड़े। ये फरमाइश आई है लोहागढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह।

की। ये अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू। अगला संदेश हमें लिख भेजा है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आकृति, आकर्षण, जयश्री और इनके सभी संगी साथियों ने। अगली फरमाइश दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा की। ये संदेश हमें लिख भेजा है बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची, तनिया करमकर ने। ये फरमाइश हमें लिख भेजिए हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया की। अगला संदेश हमें लिख भेजा है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका सिंह ने। ये संदेश पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसीतासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये फरमाइश एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी और अंकित कांगड़ा की। अगला संदेश हमें लिख भेजा है राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने। ये संदेश हमारे पास आया है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, डुगू, भाविका सिक्का का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

और ये संदेश मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, विजया तायड़े, वसंतराव भोजने और सुनंदा भोजने का। और ये फरमाइश चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी और इनके सभी परिवारजनों की। जिला कैरो, जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्बीज, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद। ये संदेश महाराष्ट्र से श्रीराम गोधली, उषा वैष्णवी और युवराज गोधली का। नांदेड़ से लिखने वाले श्रोता प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। ये फरमाइश हमारे पास खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार वोडाना और इनके सभी संगीत साथी। अगली फरमाइश भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, वैवी वैदेही जोशी, हसीना, मनीष वर्मा, रिहान, पायल, अंकिता, पूनम नायडू और इनके सभी संगीत साथी। ये संदेश पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता, यशराज ऋषि और कृष्णा घोड़के का। ये संदेश लिखने वाले श्रोता चौहलदा वाकपा से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। अगली फरमाइश करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश की। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया हुआ यह गीत। फिल्म का नाम है सितारा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
8: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं महेश दत्त चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे महेश दत्त चतुर्वेदी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एक का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और यह तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका का कार्यक्रम चित्र भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

दिन में 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा घर अंगना। इसमें वार्ता प्रसारित की जाएगी बाल मनोविज्ञान और अभिभावक। वार्ताकार होंगी डॉक्टर निशा अग्रवाल।

अपराह्न 2:30 पर सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज की बात होगी प्रदूषण रोकने में युवा करें पहल और डॉक्टर नेल्सन मंडेला जयंती विषयों पर।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। इसमें आज वार्ता प्रसारित की जाएगी बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन के विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ऋतिक नामदेव पंचार।

संध्या 7:05 पर साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कथा। कथाकार होंगी विजेता चतुर्वेदी।

रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर भी ले सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर अंगना।

0: घर अंगना कार्यक्रम को सुन बेवारी हमारी सबई बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनाओ कैसी हो?
1: बढ़िया।
0: अरे बहनाओ हम सब तो सदैव ही बढ़िया हैं। क्यों? क्योंकि जो गृहिणी बन गए ना तो अब वहाँ से हमारी समझ को विस्तार है गयो है और दूसरों दुखी है भी को हम पे समय ना है। सवेरे उठें जब से काम हमारे संग जगह, चाहे तो गर्मी पड़ रही हो और चाहे पड़ रही हो मूसलाधार बरसात, हमें अपना काम कर्तव्य से मतलब है। और बहू के अलावा हमारा मस्तिष्क अपनी जिम्मेदारी न लेके रात भर तैयार रहे कि सवेरे उठते ही हमें जे काम करना है। और तो और पूरे दिन की हमारे पास चर्चा भरी भइयों में कि अब हमारे बच्चा छोटे हैं तो बिना टीका लगवाने हैं, बिना दवाई देनी है, बिना अच्छा भोजन देना है, बिना हष्ट पुष्ट बनाना है। वहीं वह बच्चा बड़े हैं जामे थोड़े तो बिना विद्यालय भेजना है। वहीं अपनों देखना है कि इनको विद्यालय भेजवे के ताई हमें धनराशि चाहिए। वहीं जिन बहनन के बालक थोड़े बड़े हैं गए, बिना अपने बिन बालकन की चिंता कि इन्हें नौकरी धंधे पे लगाना है, इनके काजे काम खुलवाना है। तो अगर बात करें कुल मिलाए के तो सबसे बड़ी चिंता हमारे पास धन की लगी रही है कि कैसे हो हमारे पास पैसा आवे और हम काम करें और पैसन को फिर घुमा में और अपने चौका को सामान भरवा में, अपने बालकन की फीस जमा करवा में, और कैसे वो अब्बा को बिहार होए तो माँ हमें अपना लिफाफो भेजना है। हमारे जो परिवार है ना, ये समाज है जहाँ में एक दूसरे के ताई जुड़े हुए हैं और काम काज लगे हुए हैं। तो बहनों आज तो फिर बढ़िया है, कौ समय में हम साहूकार से पूंजी उधार लियो करते और ऋण दे के चुकायो करते, ब्याज दे के चुकायो करते। और आज बैंकन के राष्ट्रीयकरण से बहनाओं हमारे स्वावलंबन में बड़ी मदद मिल गई है। कल विश्व बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है 19 जुलाई को, पर बहनाओं देखो कितनी अच्छी बात है कि चाहे हम आज कर रहे हैं, आज हम जब चाहें अपनी ज़रूरत के काजे बैंक से ऋण ले सकें और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। अगर यही बात है कि अगर हमारा बालक को पढ़वे जा रहे हो है, हमें पैसन की ज़रूरत है, तो हमें कहो के आगे हाथ फैलावे की ज़रूरत ना है। हम सीधे बैंक के पास जाए के सरकार की योजना से जुड़ जावे कि भैया हमारे बच्चन को छात्रवृत्ति मिल रही है तो बैंक से मिलेगी, या बैंक में कागज लगाए दिए तो पैसा ले आए, जामे हमू खुश हमारे बालक को खुश। और सबसे बड़ी बात हम तनाव मुक्त है गए कि हमने काऊ ते उधार ना लायो, हम काऊ के ऋणी ना है। हमें हमारी भारत सरकार ने, हमें हमारी बैंकर ने आसानी से सब कुछ प्रदान कर दियो है। और जब हमारा बालक कमाएगा हम चुकाएंगे, और या फिर हमारी इनकम बढ़ेगी तो धीरे धीरे ईमानदारी से चुकाते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, धन्यवाद देते चलेंगे। तो बहनों ये सब प्रसन्नता की बातें, और मन में संतुष्टि और प्रसन्नता सदैव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसीबतन को का है, वो तो बैठी रहे में आती रहे में जाती रहे, पर हमें धैर्य से सूझबूझ से अपने जीवन की पतवार को चलाना है। जीवन नैया है तो पतवार विवेक है, तो विवेक से बुद्धि से अपने कामन को करते रहना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। और बहनाओं कैसे वो अपने मनोरंजन से पीछे ना हटना बहनाओं, तो आओ आनंद ले में जब बहुत सुंदर से लोकगीत को।

मन में बसो बिहारी लाल, वृंदावन में कुटिया बसाऊंगी। बहनों, प्रमोद कुमार शर्मा के सुर में। अब ये हमारी बहना सुन रही हती जा सुंदर से लोकगीत को, कि मैं ना वृंदावन धाम को वास भलो, यहाँ पास बहें यमुना पटरानी, यमुना यम दूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। और वृंदावन में तो हम ब्रजवासिन के प्राण बसे हैं, हमारी कन्हैया बसे हैं, हमारी राधा रानी बसे हैं। तो हम अपने ब्रज को छोड़ कहूँ ना जावें, ऐसी प्रार्थना हम अपने कन्हैया से हर क्षण करें कि हे प्रभु, हमसे ब्रज कब ना छूटे। तो बहनाओं, ब्रज में रह के अच्छे काम करें, अपने कन्हैया की जब भूमि को नाम रोशन करें। तो बहनाओं जी, हमारे जो बालक है ना, इन

0: हमें कृष्ण कन्हैया दिखें, हमारी जो छोटी छोटी बालिकाएं उनमें राधा रानी दिखें। अक्सर हमारी बहन जब अपनी छोटी सी बेटी ने खेलते कूदते देखे ना, तो कबो कबो उनके पैरों में पायलू बांध दे मैं कि मैं छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। तो वहीं अपने बालकन के जब कर्तवन ने देखे हैं तो कि मैं नंदलाल है, कन्हैया है, माखन चोर है। तो अपने बालकन को देख के हर माता पिता सिहावे, और माता पिता की चाहत होवे कि हमारे बालक बहुत अच्छे बने, योग्य बने, होनहार होएं। तो बहनों कभी कभी हम यह सोचें कि ऐसी कौन सी सलाहें जो हमारे काजे होएं, हमारे बालकन के काजे होएं, जो हमारे ध्यान में ही ना होए, जैसे हम अपने बालकन को अच्छा बना सकें, बिनके भविष्य को गढ़ सकें। तो हमें चिंता लगी रही है। तो बहनों चिंता मत करो, बाल मनोविज्ञान और अभिभावक जब विषय पर जानकारी ले मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल से।
1: जिसमें माता पिता अपनी संतान का लालन पालन करके समाज को आगे बढ़ाते हैं। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है और माता पिता उस पाठशाला को चलाने वाले गुरु हैं। बालक के संपूर्ण विकास के लिए माता पिता को बाल विज्ञान को जानना चाहिए, अर्थात बालक के मन व व्यवहार को समझना आवश्यक है एवं उसी के अनुसार बालक के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। माता पिता को बालक के स्वरूप, रुचि, आवश्यकता व इच्छा का पूर्ण ध्यान रखते हुए उसे उचित निर्देश, सलाह व सहयोग देना चाहिए। परिवार का वातावरण स्वच्छ व निर्मल होना चाहिए, जिससे बालक अपने मन की बात खुलकर अपने माता पिता को बता सके और बालक की क्षमताओं का उचित व उत्तम विकास हो सके। प्रायः ये देखा जाता है कि आज के भौतिकतावादी समाज में माता पिता धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाते हैं। समय के अभाव में वे बालक के मन व व्यवहार से अज्ञान रहते हैं और न ही उन्हें समझने का पूर्ण प्रयास ही कर पाते हैं। धीरे धीरे वे बच्चों से दूर हो जाते हैं और कभी कभी बच्चों की इच्छा व आवश्यकता की उपेक्षा भी कर देते हैं, जिससे बच्चे अकेलापन महसूस करने लगते हैं और उनका व्यक्तित्व कुंठित होने लगता है। कभी कभी तो ऐसी भी विडंबना हो जाती है कि बालक माता पिता में कम रुचि लेने लगते हैं और यहाँ तक कि माता पिता का अपमान भी कर डालते हैं। माता पिता द्वारा उनकी भावनाओं को न समझ पाने के कारण वे अनेक बड़ी बड़ी गलतियां भी कर देते हैं। अतः माता पिता को बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए, उनके साथ भांति भांति के खेल खेलने चाहिए, उनके साथ घूमने जाना चाहिए व उनके मन को समझते हुए उनकी आवश्यकता व इच्छाओं को पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही उनके लिए ऐसे कार्य करें कि बच्चे को यह एहसास हो कि हमारे माता पिता हमारा बहुत ख्याल रखते हैं एवं उनके मन में हम बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। शिक्षित माता पिता बाल मनोविज्ञान को समझते हैं, बच्चों को समझकर उचित मार्गदर्शन देते हैं, बच्चों के व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं व समय आने पर पर्याप्त नियंत्रण भी रखते हैं। किंतु अशिक्षित अभिभावक इसे नहीं समझ पाते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा करते हैं व गृह कलेश करते रहते हैं, बच्चों को डांटते फटकारते हैं, बच्चों की बातों को महत्व नहीं देते हैं, बच्चों का उचित प्रकार से ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसका बच्चों पर कुप्रभाव पड़ता है। बच्चों का विकास उचित प्रकार नहीं हो पाता और कभी कभी तो उनका विकास

अवरुद्ध हो जाता है, उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। अतः अभिभावकों को बच्चों की मानसिकता समझनी चाहिए व उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए परिवार में शांति व प्रेम का वातावरण बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों में प्रेम, सहयोग व सम्मान का संबंध बनाए रखना चाहिए। बालक एक नन्हे पौधे के समान होता है, अभिभावक को उनका ध्यान माली की भांति रखना चाहिए। बालक की सभी प्रकार की आवश्यकताओं व भावनाओं को प्रेम पूर्वक पूरा करना चाहिए। उनकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा भलीभांति नहीं हुआ तो बालक रूपी पौधा मुरझा जाएगा। कभी कभी बाल मन को लगी ठेस भविष्य के लिए नासूर बन जाती है और उनका संपूर्ण जीवन अव्यवस्थित व अंधेरे में डूब सकता है। अभिभावक को प्रत्येक क्षण बालक के व्यवहार पर ध्यान देते रहना चाहिए। कभी बच्चे का व्यवहार असामान्य दिखाई देता है तो विशेष ध्यान देकर पता लगाना चाहिए कि वह इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है, अथवा अपने मृदुल व्यवहार से उसे विश्वास में लेकर कारण का पता लगाना चाहिए और उस कारण को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करके बच्चे के व्यथित मन को शांत करना चाहिए, जिससे बच्चा आपके मन के करीब आ सके। बालक किसी भी विशेष चीज में रुचि दिखाए तो अभिभावक को उसमें रुचि लेनी चाहिए व उसकी रुचि को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुशी प्रदर्शित करनी चाहिए व उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इससे बच्चे को आंतरिक प्रसन्नता व आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। ये सब बातें बच्चों की इच्छा, विश्वास, शक्ति व सामर्थ्य में वृद्धि करने का आधार बनेगा। प्रत्येक बालक की रुचि, स्वभाव, मनोवृत्ति, पसंद, क्षमता व इच्छा अलग अलग होती है। एक ही परिवार के बच्चों के व्यवहार में अंतर देखा जा सकता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों का व्यवहार व पसंद अलग अलग होती है। अतः प्रत्येक माता पिता को बालक के मन को पढ़ना चाहिए। जो अभिभावक अपने बच्चों को समझते हुए आचरण करते हैं तो यह निश्चित है कि उन बच्चों का व्यक्तित्व सुदृढ़ होगा एवं भविष्य में वे एक आदर्श नागरिक व समाज का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकेगा। सभी माता पिता को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे बच्चों को समझ सके व उचित निर्देश समय समय पर दे सकें। बच्चों के समक्ष आने वाली नित नई समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कर सकें। इसके लिए अभिभावकों का शिक्षित होना आवश्यक है और आज के भौतिकतावादी समाज का परिवार के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करके स्वयं को आदर्श अभिभावक बनाने का प्रयास करना चाहिए। अभिभावकों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अपने बच्चों को पर्याप्त समय देना, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना, उनकी रुचि में रुचि दिखाना, उपेक्षित व्यवहार न करना, उनको पर्याप्त स्वतंत्रता देना, मन को पढ़ने की योग्यता रखना, उनका विश्वास जीतना, उन पर विश्वास

0: विश्वास करना, उनके असामान्य व्यवहार पर भी ध्यान देना व शीघ्र इस प्रकार के असामान्य व्यवहार के कारण को ढूंढकर समाधान खोजना, उनकी क्रियाओं को स्वतंत्रता देना व उन पर नियंत्रण करने में समायोजन स्थापित करना। इन सब बातों का यदि अभिभावक ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही बालक एक आदर्श चरित्र व नैतिकता से पूर्ण होगा। परिवार का सरल व दूषित वातावरण बनाना अभिभावक के हाथ में ही है। सरल वातावरण बच्चे को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा और दूषित वातावरण बालक के विकास को अवरुद्ध कर देगा। अभिभावक ही बालक के मन को समझकर उसका सही विकास कर सकते हैं और उनके जीवन को एक मजबूत नींव प्रदान कर सकेंगे। अतः अभिभावक व बालक के बीच एक सरल, सुगम, समझदार, विश्वासपूर्ण व खुशहाल संबंध होना चाहिए। अभिभावक को बच्चे को दूर से ही देखकर उसके अंदर की भावनाओं को समझ लेने का सामर्थ्य होना चाहिए।
1: तो अभी हमारी बहना कितनी बढ़िया जानकारी ले रही थी डॉक्टर निशा अग्रवाल बहन से। जानकारी को तो हम सभी बहन इंतजार करें। देखो बहनों, बहुत सारी बात हम एक दूसरे से सीख जावें, लेकिन कोई विशेषज्ञ जब वह बात को बतावे ना तो वह बात में वजन होवे। तो अब ध्यान रखियो, अपने बालकन के संग हमें मित्रवत रहनो है। कबू हम डांट सकें, अपने बालकन को चिल्लाए सकें, क्योंकि हम मैया हैं बिनकी, लेकिन हमें देखनो है कि वो चिल्लानो कहीं ज़्यादा तो ना है रहे हो, क्योंकि हम तो गुस्सा में कह गए, अब बालक भाई कहाँ पे ले रहे जे और देखना है बहनाओ, क्योंकि अगर हमने जी देख लिया तो चिल्ला वो व्यर्थ ना जाएगा। अपने बालकन को सिखाना पड़े, डांटना पड़े, कबो कबो मारना पड़े, पर सबसे ज़्यादा अगर असरदार बात है तो वो है प्यार। प्यार में बालक बहुत सारी बातन को सुने, समझे, सीखे। और बहनाओ, एक समय ऐसा होगा कि नैनन में बस जा, मैं आँखन से मैया ने कही और बालक बाकी बात को समझ भी लग जा। मैं मैया और बच्चन को जई संबंध होना चाहिए, नैनन को संबंध होना चाहिए, और जई बहनों हमारा हमारे भगवान के संग होना चाहिए, हमारे ईश्वर भी हमारे नैनन में ऐसे ही बसो होना चाहिए। तो आओ सुने बहन पूनम के स्वर में जब बहुत सुंदर से लोकगीत को।

मेरे नैनन में श्याम रंग छाए गयो री। अबई हमारी बहना बहन पूनम से सुन रही हती जे मीठो सो लोकगीत। बहनाओं, हमारी माटी की सौंधी खुशबू हमारे इन लोकगीतन में भरी भई है, और जब प्रेम की फुहार बरसे है ना, तो माटी की खुशबू मन को गदगद कर देवे। और बहनाओं, हमारी मन प्रसन्न है जावे और हम सब का जो भूल जावे एक मिनट के काजे, और हमें बड़ो आनंद आवे, मन शांत है जावे। और शांत मन में जब विचारन को संगम होवे ना, तो हम सोचें अपने बालकन को खूब पढ़ांगे, खूब लिखांगे, अच्छा बनांगे। बहनाओं, हम धरती तक की ना सोचें, कबो कबो हम सोचें कि हमारा बालक इतना ऊंचा बन जाए कि हमारा नाम रोशन करे। और बहुत सारे बालक आज हमारा नाम रोशन कर रहे हैं मैयन को। और बहनों, आज से ही ना है, बहुत पहले से जिन जिन माता पिता ने नींव रखी अपने बालकन को पढ़ाई की, तो बालकन ने धरती पे ही ना है चंदा मामा पे वो अपनी पकड़ बनाए ली और चंदा मामा तक पहुंच गए। तो बहनों, जब मनुष्य चंदा मामा पे पहुँचो, तब बाने चंदा मामा की छवि को हमें बतायो और मन को ऐसा अद्भुत आश्चर्य दियो कि हम तो सोचते कि जे चंदा मामा है और बा में तो कितने रहस्य छुपे हुए हैं। तो बहनाओं, अपने बालकन को खूब पढ़ावें, खूब लिखावें, आगे बढ़ावें। और अब आज्ञा दो हमें हमारे जा घरंगना कार्यक्रम को विराम देवे की। हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम।

0: ठीक है, अब सुनिए। एक बार मैं पूरा गाकर सुनाऊंगी, फिर आप गाइएगा।
1: देश सेवे सेयवे सेर्ंद यंद निन्रुलोम आसयंगल वाळ्विले अन्नै अन्ब सेवे।

0: अब आप गाइए।
1: 1 2 3 4।
2: हरिय जय गैया वैया आनकोंड सेगुवो पेरमयेन्नु मोगवे पेरियेन्नु कोल्लुवो।
0: समझ गए? अच्छा, अब हम ताल के साथ गाने के बाद स्थाई गाएंगे।
1: 1 2 3 4।
2: हरिय

0: बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक गाया आपने। बड़े होकर आप भी इसी तरह देश सेवा करना और अपने देश का नाम रोशन करना। नमस्ते बच्चों।
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक शिक्षा गान पाठ। बोल थे देश सेवई सेवई, गीतकार थे पेरिया स्वामी थुरान। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया।

0: किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम-1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम-1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई

0: बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आर फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
1: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक

0: के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था रोशन ने। स्वर मोहम्मद रफ़ी का था। फिल्म का नाम था बरसात की रात। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म बाजार से। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, संगीत खय्याम साहब का है।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था शहनाई। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म बेगाना से। इस गीत को स्वर दिया है किशोर कुमार ने, संगीत अनु मलिक का है, शब्द रचना अनजान की है।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी। बोल लिखे थे SH बिहारी ने, संगीत दिया था ओपीर नैयर ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म गाइड का ये गीत। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत दिया था SD वर्मन ने। और इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:10 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:09 हो रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। इस कार्यक्रम की आज आप 33वीं कड़ी सुनेंगे। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

बिल्कुल चलता रहेगा गाते गुनगुनाते का ये सफर, लेकिन पहले शुरुआत तो हो, बिल्कुल शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही सफर का जो मजा है वो आना शुरू होता है। 5:11:40 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1। आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे 80s और 90s के गाने।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी के सुर में आपने सुना खानदान फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है ईवल रिटर्न 1920। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। आइए सुनते हैं।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह को, फिल्म का नाम था ईवल रिटर्न 1920। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू साधना सरगम की आवाजों में, फिल्म का नाम है सैनिक।

सैनिक फिल्म में आपने सुना कुमार सानू को। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन, इजी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: युवाणी सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में। साथियों, क्या खूब कहा है किसी ने, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर खुद के साथ में घूमने जाओ तो अच्छा है। अपने घर के रोशन दीपक देख लिए, अब खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ खुशबू।

साथियों, जिस धरती पर हम रहते हैं वही हमारा घर है, लेकिन आज यही घर प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हवा जहरीली होती जा रही है, नदियां गंदी हो रही हैं, मिट्टी अपनी उर्वरता को खो रही है और शोर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस चुनौती का समाधान कौन करेगा। इसका सबसे सशक्त उत्तर है देश का युवा। जी हाँ, युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। उनके विचार, उनका उत्साह और उनकी ऊर्जा समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यदि हर युवा ये संकल्प ले कि वो पर्यावरण की रक्षा करेगा तो प्रदूषण तो काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले उसे क्या करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाए। हर युवा अपने जन्मदिन पर या किसी विशेष अवसर पर या राष्ट्रीय पर्व पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देखभाल भी जरूर करे। प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दें। कपड़े या जूट के थैले को अपनाएं और एकल उपयोग होने वाली जो प्लास्टिक होती है उससे दूरी बनाकर रखें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, यानी कि अब हम देखते हैं कि हर घर में बहुत सारे वाहन हर किसी के लिए उपलब्ध होते हैं, तो जहां संभव हो पैदल चलें, साइकिल चलाएं या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, इससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल और बिजली की बचत तो हम बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं। अनावश्यक रूप से जल और बिजली का उपयोग न करें। संसाधनों की बचत भी पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छता अभियान में भाग लें। जितने भी स्वच्छता अभियान आसपास होते हैं उनमें सभी युवा भाग लें, अपने आसपास सफाई रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएं। सोशल मीडिया, विद्यालय, महाविद्यालय और समाज में लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दें। पेड़ों की छाओं में ही जीवन मुस्कुराएगा, हरियाली से ही अपना कल सवर पाएगा। आओ मिलकर ऐसा संकल्प निभाएं, प्रदूषण मिटाएं, नया सवेरा लाएं। जी हाँ दोस्तों, युवा नई सोच रखते हैं और नई तकनीक को अपनाने में सबसे आगे होते हैं। वो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। यदि स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं के युवा मिलकर के नियमित रूप से वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाएं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा।

इस प्यारे से गीत के बाद अब रुक करते हैं हमारी आज की चर्चा के विषय में, और आज है डॉक्टर नेल्सन मंडेला जयंती। जी हाँ, आज हम विश्व के महान मानव अधिकार सेनानी, शांति के प्रतीक और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

इनका जन्म 18 जुलाई यानी आज ही के दिन 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मिवेजो गांव में हुआ था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और अपना पूरा जीवन रंग भेद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के साथ अत्यंत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। मंडेला ने समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय के लिए आवाज उठाई। अपने संघर्ष के कारण उन्हें लगभग 27 वर्ष जेल में बिताने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी हिंसा, नफरत या बदले की भावना को नहीं अपनाया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने देश में मेल मिलाप, लोकतंत्र और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया।

साथियों, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व ने दक्षिण अफ्रीका को एक नई दिशा दी। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। नेल्सन मंडेला का जीवन हमें ये सिखाता है कि धैर्य, साहस, क्षमा और दृढ़ संकल्प से बड़ा परिवर्तन संभव है। जो अन्याय के आगे कभी झुके नहीं, मुश्किलों के आगे कभी रुके नहीं, मंडेला का जीवन देता यही संदेश, मानवता से बढ़कर नहीं कोई भेष। जी हाँ, नेल्सन मंडेला केवल दक्षिण अफ्रीका के नेता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए न्याय, समानता, मानवाधिकार और शांति के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जयंती हमें ये संकल्प लेने का अवसर देती है दोस्तों, कि हम भेदभाव से दूर रहकर प्रेम, समानता और मानवता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं।

साथियों, बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि इस सृष्टि का, इस पल का, इस जीवन का, जहां हर सुबह एक नई कहानी लाती है और हर सांझ सोच की लौ फिर से जगाती है। ईश्वर का धन्यवाद जिसने मन को शब्दों का घर दिया, भावनाओं की मिट्टी में बीज बोए और कलम को बारिश की तरह बहना सिखाया।

साथियों, जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। जी हाँ, सबसे प्रेम बांटते रहें और सब में प्रेम बांटते रहें और खुद खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें। इसी के साथ युववाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी

राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा

0: को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती और रात 10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।

किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे खेतों में वर्षा जल का संरक्षण और जैविक खेती से टिकाऊ उत्पादन। इसी कार्यक्रम में आप एक वार्ता भी सुन सकते हैं। विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ऋतिक नामदेव पवार।

कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक आप सुन सकते हैं शाम 7:05 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कथा, शीर्षक होगा चंदना, कथाकार होंगी विजेता चतुर्वेदी।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे हीरो नंबर 1 के कुछ गीत। समय याद रखिएगा 8:30।

ये था आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति परक रचना FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को राम राम। भैया देखो, आजकल को मौसम बरसात को मौसम चल रहे हो और या समय पे हमारे खेतन में फसल लहलहा रही है, हमारी खरीफ की फसल। अब बात करें भैया बरसात के मौसम में जब पानी को हम कैसे संरक्षण करें। सबसे बड़ी पहली बात यह है कि हम अपने खेतन की मेड़बंदी बढ़िया करके रखें, ऊंची मेड़ रखें, जाते कि भाई एक खेत को पानी दूसरे खेत में निकल के नहीं जाए और पानी को जो स्तर हो वो बढ़िया बने रहे। चूँकि ज़्यादातर कहा करें कि भैया छोटी छोटी मेड़ होएं और जब पानी भर जाए तो वास में कहा करें कि मेड़ न पीते पानी उतर जाए और फिर एक खेत में से दूसरे खेत में जाए तो दूसरे भैया को नुकसान हो जाए और अपने खेत में पानी न बचे। ऐसे ही खेतन को पानी बह बह के दगरीन में बह डूले और वो काऊ काम को ना है, वह दगरे में ही भरे भरे और जब वहाँ में गाड़ी बुग्गी निकलें तो भैया कीच खच्चड़ है जाए, तो न तो वो पानी खेत को रहो और न वो पानी दगरे में काऊ काम को रहो। तो भैया याते बढ़िया तो एक बढ़िया उपाय ये है कि जहाँ कुम खाली

जगह पर ही होए, गाम समाज की या वैसी जो काम में ना आ रही होए गामन में, तो वह जगह पे एक भैया तालाब सोई बनवा दियो जाए, तो जो पानी बरसात को बह के आवेगो वो वह तालाब में इकट्ठो है जाएगो। अब का हो, मान लियो चलो 10-5 दिना बरसात नहीं भई और फसल को जरूरत पड़ी पानी की, तो बस फिर का है वहाँ में। आजकल तो जो इंजन ते चले बारे ऐसे साधन चल गए, पंप चल गई हैं, सो वहाँ में डारो और लंबे लंबे पाइप ले गए खेतन में डाल लियो, और भैया वही जो पानी बह के गो तुम्हारे खेतन को, वही तुम्हारे खेतन को फिरते काम आ जाएगो। तो ऐस करके खेतन में जो वर्षा को जल है बाको संरक्षण कर सके। देखो आजकल तो ऐसी तकनीकी चल गई हैं कि जो हमारे चारों ओर को जो फसल है वहाँ के चारों ओर जो है ऐसी अच्छी मेड़बंदी करवाए के, और भैया अपने खेत को जलते सुरक्षित रखें, यानी जल पूरा वहाँ में भर के रखें। वैसे तो पानी हमारा चाहे खेत को हो, चाहे हमारे खेत जो घर हैं उनकी छत को हो, तो वाहू पानी हम सुरक्षित करें। क्यों के छतन पे ते पानी ले और नाली में बहेगो और जाके अगार भैया नाली में के माध्यम से और वो आगे को बहेगो, पर हमने वह पानी को कोई कैसो सदुपयोग नहीं करो। तो करनो का चाहिए कि वह पानी को एक अपने नहरिए में गहरो सो बोरिंग करवाए के, और जो छत्र पे पानी आ रो वाय बोरिंग के माध्यम से जो अंदर हम चला दें, तो पानी को स्तर जो है ऊंचो बनो रहेगो। चूंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि जब भैया ने भाटे में जरूरत पड़ी पानी की, तो उनके बोरिंग पानी छोड़ गई, छो छोड़ गई कि पानी को स्तर नीचे चलेगो। भाई जब हम जल को इतना दोहन करेंगे तो पानी को स्तर तो नीचे जाएगा ही जाएगा। हमने कहा कर रखे हो कि पानी बहवे को छोड़ दें, तो हम वाक सुरक्षित ना रखें, वाको संरक्षण ना करें, वह इकट्ठो ना करें। तो भैया सबरी बात न की एक ही बात ये कि जो बहे वारो जल है वह हम तालाबन में, पोखरन में या बोरिंगन के माध्यम से अगर जमीन में पहुँचावें, तो वाते का है कि पानी को स्तर ज्यों की त्यों बनो रहेगो, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी बोरिंगन चला के, अपनी ट्यूबवेल चला के पानी को प्राप्त कर लेंगे। तो जी रही भैया खेतर में बरसात के जल के संरक्षण की बात। अब आपको थोड़ा मनोरंजन करवा दें, तो सुनो शालिनी शर्मा की स्वर में गायब हो जी लोकगीत पिया मो जामन खवाया जाए, क्योंकि भैया आजकल जामन खूब लग रही हैं, तो सुनो भैया जी लोकगीत।

0: बरखा की आई बहार रे, पिया मुए जामुन खवाए दे। शालिनी शर्मा के स्वर में भैया अभी आप जय ब्रज लोकगीत को आनंद ले रहे थे। देखो भैया, बरसात को मौसम तो चल ही रहे हो, और या मौसम में हम अपनी फसल के संग संग अपने पशुओं को भैया देखभाल करें, चूँकि देखो ऐसा हो तो हम लापरवाही कर दें, खेती क्यारी में लगे रहें और हमारे पोहे जेंगरे क्यों तो धूप में ही बंध रहे, क्यों बरसात पड़ रही है तो बरसात में ही ठाड़ी, और नीचे उनके कीच कांत गरिंद है रोए हमने वहाँ खड़े कर रखे, तो बातें खुर पक जाएँ, बातें कलीली लग जाएँ, और तरह तरह की गंदगी ते पामन में भी आओ फूड़ा फुंसी शराब पड़ने लगें, तो हमारो पशु जो है याकू जी बरसात व्याप जाए। तो कहाँ कहाँ उपाय हमें ऐसे करने जाते हमारो पशु बरसात के मौसम में सही रहे, स्वस्थ रहे, बढ़िया दूध को उत्पादन करे, तो यही के विषय में एक जानकारी भैया हम आपको दिवा में कि बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ऋतिक नामदेव पमार। सुनो भैया,
1: बारिश का मौसम आते ही सारी तरफ हरियाली छा जाती है, लेकिन बारिश का मौसम हमारी सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। वातावरण में आर्द्रता की अधिकता होने के कारण पशु की पाचन प्रक्रिया के साथ साथ उनकी रोगरोधक शक्ति पर भी असर पड़ता है। परिणाम स्वरूप पशु अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। मौसमी बीमारियों की वजह से दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, इससे उनके दूध उत्पादन में भी काफ़ी कमी आ जाती है। उसके कारण दूध उत्पादक का काफ़ी आर्थिक नुकसान हो जाता है। साधारणतः भारत में वर्षा ऋतु का समय 15 जून से 15 सितंबर तक का होता है। इस दौरान वातावरण में अधिक आर्द्रता होने की वजह से वातावरण के तापमान में अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसका कुप्रभाव प्रत्येक श्रेणी के पशुओं पर भी पड़ता है। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भरने से पशुओं द्वारा मिट्टी और पानी भी संक्रमित हो जाते हैं, जिसके संपर्क में आने से स्वस्थ पशुओं के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। इस मौसम में पशुओं में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोग जैसे गलगो

मोटू, लंगड़ा बुखार, खुरपका, मुंहपका, निमोनिया आदि है। परजीवी रोगों में बबेसियोसिस, थैलेरियोसिस व परजीवी जू, चीचड़ आदि प्रमुख हैं। पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग बरसात के दिनों में पशुओं को प्रभावित करते हैं। बारिश के मौसम में पशुशाला का विशेष ध्यान रखें, जिसको नियमित रूप से साफ करें। पशुओं को कृमिनाशक दवाइयों को नियमित पिलाने से पशु उत्पादकता को प्रभावित करने वाले एक कारण से बचा जा सकता है। बरसात के मौसम में बारिश के कारण, उच्च तापमान के कारण वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है। इसके कारण पशु अपने आप में तनाव महसूस करते हैं, इसलिए अपने पशुओं को इन बीमारियों का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। बरसात के मौसम में शेड में पानी नहीं भरना चाहिए। बाड़े की सतह सूखी व फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की संभावना रहती है, इसलिए सप्ताह में एक या दो बार हल्के लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ करना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की संभावना भी बढ़ जाती है, तथा ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। जरूरी है कि किसान अपने पशुओं की समय समय पर देखभाल करते रहे। उसमें किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए किसान को ये पता रहना जरूरी है कि पशुओं में कौन सी दो बीमारियां हो सकती है, उसके लक्षण क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं पशुओं में कौन सी दो बीमारियां है और उनके लक्षण कैसे पहचानते हैं। खुर और मुख संबंधी बीमारियां बारिश के मौसम में ज्यादातर हो जाती है। खुर और मुख की बीमारियां खासकर फटे खुर वाले पशुओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये बीमारी भारत के काफी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके चलते किसानों को काफी अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। बुखार, दूध में कमी, मुंह में छाले तथा पैरों में छालों का कारण थनों में शिथिलता, मुख में छालों का कारण झागदार लार का अधिक मात्रा आना। ये बीमारी कैसे फैलती है? ये वायरस इन प्राणियों के उत्सर्जन व स्राव से फैलते हैं। जैसे लार, ये वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा द्वारा फैलता है। संक्रमित भेड़ और सुअर इन बीमारियों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संकर नस्ल के मवेशी स्थानीय नस्ल मवेशियों से जल्दी संक्रमण पाते हैं। ये बीमारियां पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवगमन से फैलती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उनमें बीमारियां जल्दी होती है और प्रजनन क्षमता घट जाती है। इस प्रसार को कैसे रोका जाए? स्वस्थ प्राणियों को संक्रमित क्षेत्रों से नहीं भेजना चाहिए। किसी भी संक्रमित क्षेत्रों से जानवरों की खरीदी नहीं करनी चाहिए। नहीं खरीदे हुए जानवरों की अन्य जानवरों से 21 दिन तक दूर रखना चाहिए। टीकाकरण करना आवश्यक है। सभी जानवरों को प्रति 6 माह FMD के टीके लगाए जाने चाहिए। यह टीकाकरण भेड़, बकरी, सुअर आदि सभी को लागू है। बछड़ों को प्रथम टीकाकरण 4 माह की उम्र में दिया जाना चाहिए और दूसरा टीकाकरण 5 माह की उम्र में लगना चाहिए। आइए हम देखते हैं पशु में विषाणु जनित रोग कौन से हैं। सूक्ष्म विषाणु से पैदा होने वाली बीमारियों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे कि खरेडू, मुंहपका, खुरपका, चपका, खुरपा आदि नामों से जाना जाता है। यह बीमारी हमारे देश में हर स्थान में होती है। इस रोग से ग्रस्त पशु ठीक होकर अत्यंत कमजोर हो जाते हैं। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इनकी प्रमुख किस्मों में OAC, आशिया 1, आशिया 2, आशिया 3, सेट 1, सेट 2, इनकी 14 किस्में शामिल है। हमारे देश में यह रोग मुख्यतः OAC तथा आशिया 1 प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। नम वातावरण, पशु की आंतरिक कमजोरी, पशुओं तथा लोगों को एक स्थान के दूसरे स्थान पर अवगमन तथा नजदीकी क्षेत्रों में रोग का प्रकोप इस बीमारी का फैलाने का एक सहायक कारण है। यह रोग बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने से पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकलने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के अवगमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर व थनों में पड़े फफेलों में अधिक पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीने तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ पशु के रक्त में पहुंचते हैं तथा लगभग 5 दिनों के अंदर उसमें बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। आइए बात करते हैं पशु रिंडरपेस्ट के बारे में। यह रोग भी एक विषाणु से पैदा होने वाला छूतदार रोग है, जो कि जुगाली करने वाले लगभग सभी पशुओं को होता है। इसमें पशु को तीव्र दस्त अथवा पेचिस लग जाते हैं। यह रोग स्वस्थ पशु को रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने से हो जाता है। इसमें पशु को तेज बुखार आ जाता है तथा पशु बेचैन हो जाता है। दूध उत्पादन में भी कम आ जाता है और पशु की आंखें सुर्ख लाल हो जाती है। 2-3 दिन के बाद पशु के मुंह में होंठ, मसूड़े व

के नीचे दाने निकल आते हैं जो बाद में घाव का स्वरूप ले लेते हैं। पशुओं के शरीर पर बाह्य परजीवी जैसे जुए, पिसू या चिचड़ी आदि प्रकोप पर पशुओं का खून चीसते हैं, जिसमें उनके खून की कमी हो जाती है तथा वे कमजोर हो जाते हैं। इन पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता घट जाती है तथा वे अन्य बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बहुत से परजीवी जैसे कि चिचड़ियों आदि पशुओं के कुछ अन्य बीमारी जैसे फीवर का संक्रमण भी कर देते हैं। पशुओं में बाह्य परजीवी के प्रकोप को रोकने के लिए अन्य दवाइयां उपलब्ध हैं जिन्हें पशु चिकित्सक की सलाह पर प्रयोग करके इनसे बचा जा सकता है। आइए देखते हैं पशुओं में अंतर परजीवी का प्रकोप कैसे होता है। पशुओं की पाचन नली में भी अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं जिन्हें अंत परजीवी कहते हैं। ये पशु के पेट में, आंतों में यकृत उसके खून और खुराक पर निर्वाह करते हैं, जिसमें पशु कमजोर हो जाता है तथा वह अन्य बीमारियों का शिकार हो जाता है। इससे पशु की उत्पादन क्षमता में भी कमी आ जाती है। पशुओं को उचित आहार देने के बावजूद यदि वे कमजोर दिखाई दे तो इसके गोबर के नमूनों का पशु चिकित्सालय में परीक्षण करना चाहिए। परजीवी के अंडे के नमूने को देखकर पशु को उचित दवा दी जाती है जिसमें परजीवी नष्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं बरसात में रोगों से बचाव करने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिसमें पशुशाला को बरसात के पानी से बचाकर रखने के उपाय करने चाहिए। पशु आहार चारा को सूखा रखने के उपाय करें जिसमें नमी ना आए। भीगे पशुओं को कपड़ों से पोंछकर हवादार स्थान में रखें। पशुओं को अधिक मात्रा में हरा चारा ना खिलाएं। अगर भूसे में धुंध या जला लग जाए तो अच्छी तरह से धोकर एवं सुखा कर ही खाने को दे। यदि संभव हो तो यूरिया मोलासिस से उपचारित करके ही दे। यदि उस क्षेत्र में गलाघोटू रोग फैला है तो उस रोग के लिए टीके की दूसरी खुराक अवश्य लगा दे। बरसात के अंत में अंतकृमि के लिए कृमिनाशक दवा अवश्य दे। पशु के रोगी होने पर पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। आइए जानते हैं पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे करते हैं। बरसात के मौसम में सबसे जरूरी बात है दुधारी पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन करना। इसमें सबसे पहले उपाय है बचाव के तौर पर पशुओं का टीकाकरण करना, क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके चारा में भी कमी हो जाती है। इससे उनके दूध उत्पादन में कम हो जाती है, अतः उनको बरसात से पहले पशुओं के डॉक्टर द्वारा गलघोटू, लंगड़ा बुखार, देवी रोग, खुरपका, मुंहपका आदि रोगों के विरुद्ध टीके लगवाने चाहिए। बरसात में उनके पेट में कृमि हो जाते हैं, अतः उनके नियंत्रण हेतु उन्हें अल्बेंडाजॉल या पेनक्योर नामक दवा डॉक्टर की सलाह से उचित मात्रा में खिलाएं। उनके शरीर पर जुए, लीचड़, पिसू, गोमक्खी आदि बाह्य परजीवी हो जाते हैं, अतः उनके नियंत्रण हेतु शरीर पर 2 मिलीमीटर डेल्टा मिथेन बुटॉक्स नामक दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसे घोल का छिड़काव करें। आइए जानते हैं पशु आवास का प्रबंधन कैसे करते हैं। पशु में दूध उत्पादन का आवास से गहरा संबंध होता है, क्योंकि अच्छा आवास का मतलब है सूखा, आरामदेह, हवादार आवास। जब पशु को आराम मिलता है तो दूध उत्पादन सामान्य और अच्छा मिलता है। अगर पशु तनाव में है तो दूध उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए बरसात के समय खुले में बंधे हुए पशु से दूध उत्पादन कम मिलता है। अतः बरसात से पहले पशु आवास ठीक करवा लेना अति आवश्यक है। अगर आवास की खिड़कियां दरवाजे टूटे हैं तो उनकी मरम्मत करवा लें। अगर फर्श उखड़ा है तो वहां चूना या सीमेंट लगाकर समतल बना दें ताकि वहां बरसात का पानी इकट्ठा ना हो। अगर दीवार में दरारें हैं तो वहां चूना या सीमेंट लगाकर सफेदी कर दें ताकि उन दरारों में कीड़े मकोड़े शरण ना लें, क्योंकि कीड़े मकोड़े के लिए बाड़े में मेंढक आ सकते हैं और उन्हें खाने के लिए सांप भी आ सकते हैं। सभी पशुओं को बाड़े से थोड़ी देर के लिए बाहर निकालकर एक ड्रम में सूखी घास, कुछ कड़वे नीम की पत्तियां, तुलसी और तेजपान की पत्तियां आदि डालकर जला दे। इससे निकलता धुआं बाड़े में भरने दे। थोड़ी देर बाद उसे वहां से हटा दे। इस धुएं से बाड़े में मौजूद सभी कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर भाग जाएंगे। बाड़े की छत टूटी है तो उसकी मरम्मत करवा ले ताकि वहां बरसात का पानी अंदर ना आ पाए। पशुओं को गीलापन पसंद नहीं होता है, इसलिए बरसात में सूखी जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कीचड़ में रहने से पशुओं के खुरों में छाले हो जाते हैं जो बाद में फट जाते हैं, जिन्हें अल्सर कहते हैं। अगर एक बार अल्सर हो जाए तो लंबे समय तक पशु का इलाज करना पड़ता है। इसमें काफी समय और खर्च हो जाता है। पशुओं को जो शारीरिक तकलीफ होती है वो सो अलग। आवास के इर्द गिर्द बरसात का पानी इकट्ठा ना हो और उसकी तुरंत निकासी हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसमें मिट्टी का तेल या फिनाइल डाल दें ताकि उसमें मच्छर की पैदाइश ना हो। ध्यान रखें आवास के इर्द गिर्द कीचड़ ना हो और वहां सफाई रखें। अब देखिए बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं का पोषण एवं प्रबंधन कैसे करते हैं। पशुपालक भाइयों, जैसा है कि देखा गया है, जैसे ही बरसात का मौसम चालू है हमारा पशु भरपेट हरा चारा खाता है, उन्हें दस्त लग जाता है।

0: जाती है, इस कारण उनका दूध उत्पादन प्रभावित हो जाता है। दस्त लगने के कारण उनके आहार में अचानक परिवर्तन, चूंकि गर्मियों के मौसम में सामान्यतः पशुओं को सूखा चारा मिलता है, अचानक हरा चारा भरपेट मिलने से उनके पेट में सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वन की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। हमारे पशु को अपच होकर दस्त लग जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें पशुओं को एकदम हरा चारा भरपेट नहीं देना चाहिए, उन्हें हरे के साथ सूखा चारा जरूर दें और धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं। ध्यान रहे सूखे चारे में गीलापन या फफूंद ना हो, अन्यथा पशु को अफ्लाटॉक्सिस, बदहजमी, दस्त जैसी बीमारियां हो सकती है। हरा चारा साफ होना चाहिए, उसमें कीचड़ ना लगे। पशुओं को सुथरा पानी पिलाएं। पानी की गुणवत्ता पशुओं के स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ती है। पानी में अधिक लवण और विषाण यौगिकों की मात्रा पशुओं की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के पानी के उपयोग का शुष्क पदार्थ के सेवन पर प्रभाव पड़ता है। पशुओं को बरसात में सुपाच्य संतुलित आहार दे, जिसमें 60% गीला और हरा चारा और 40% सूखा चारा होना चाहिए। गाय को 1 लीटर दूध उत्पादन हेतु 300 ग्राम तथा भैंस को 1 लीटर उत्पादन हेतु 400 ग्राम दाने का मिश्रण देना चाहिए। साथ में 30-40 ग्राम सादा नमक और 20-35 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए। बरसात के मौसम में हरी घास का उत्पादन अधिक होता है, परंतु इस घास में पानी अधिक और कम पोषक तत्व होते हैं, रेशे होते हैं, जो पशु के पाचन के लिए उचित नहीं होती है। इसलिए इस मौसम में पशुओं को दस्त लग जाते हैं। इस मौसम में आहार के भंडारण पर भी ध्यान देना चाहिए, अतः दाना और चारा खिलाने में उसमें सड़न लग सकती है, जो हमारे पशु को बीमार कर देगी। पशु को हरा चारा अच्छी तरह से झाड़ कर खिलाएं, क्योंकि बरसात के समय घोघों का प्रकोप अधिक होता है। चारे के निचले तने एवं पत्तियों पर चिपके होते हैं। बरसात के अंत में अंतकृमि के लिए कृमिनाशक दवा अवश्य दें। पशु के रोगी होने पर पशु चिकित्सालय से संपर्क करें।
1: तो भैया अभी आप जानकारी ले रहे थे कि बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन, डॉक्टर ऋतिक नामदेव जी जानकारी दे रहे। भैया अब एक लोकगीत और आपको सुनवा दें, तो सुनो जी लोकगीत सुभाष चंद्र और साथ इनके सुर में गाए हुए।

सुभाष चंद्र और साथियों के सुर में गाए भये या ब्रज लोक गीत के संग ही। भैया अब हमारा जो कार्यक्रम नहीं संपन्न है रो, देव हमें आज्ञा सभी किसान भैया बहन को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे वीरेंद्र सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभिजीत और साथियों को आपने सुना देव फिल्म में। कार्यक्रम का अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वरों में। फिल्म का नाम है सूर्यपुत्र शनिदेव।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में आपने सुना सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम का अंतिम भजन हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के स्वर में। फिल्म का नाम है शिव महिमा।

0: शिव महिमा फिल्म के इस भजन के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कथा, शीर्षक होगा चंदना। कथाकार है विजेता चतुर्वेदी।
5: सावन को महीना आते ही गीत और मल्हार की बात सबसे पहले हमारे हृदय में आए जाए हैं। सावन की बहुत सी कहानी और गीत हैं। इन्हीं कहानी और गीतन की श्रृंखला में एक प्रसिद्ध कहानी है चंदना की। यह कहानी गीत के माध्यम से गाई जाए है। सावन की तीज की यह प्रसिद्ध कहानी को मुख्य पात्र है चंदना। चंदना एक विवाहिता स्त्री है जो काऊ अन्य व्यक्ति दे प्रेम कर रहे। यह कहानी वाही के प्रेम की चर्चा पर आधारित है। यह कहानी को अंत बहुत दुखद है, तो आओ शुरुआत करें यह कहानी की।

जी, चंदना की माँ यह बात से बहुत परेशान है। वो चंदना के पिता से यूं कह रही है कि सुनो राजा जी, आप चंदना के ससुर को पत्र लिखो और कहो कि वो अपनी पुत्र वधु को यानी चंदनाएं विदा कराए के अपने घर ले जाएं।

जी, राजा जी ने चंदना के ससुर को यह पत्र लिखो कि अब चंदना बड़ी है गई है। लोग वाकी विदाई की चर्चा को लेकर वाकी हंसी उड़ान लगे हैं। यह पत्र राजा जी ने डाकिया को थमाई दियो कि वो यह पत्र लेके चंदना के ससुराल पहुंचाए दे।

जी। पत्र देखत ही जमाई राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न भए और चिट्ठी पढ़वे से ही विनके मन में तरह तरह के उद्गार प्रस्फुटित होन लगे और अपनी माते विन ने कही कि ससुराल ते पत्र आयो है, अब मोए चंदना को विदा कराए वे कल सवेरे ही अपने सासरे जानो होएगो।

जी जी डाकिया वो पत्र लेके एक गांव पार कर दूसरो गांव पार कर फिर चंदना के ससुराल पहुंचो। वहां पूरी कचहरी तैयार ही देखत।

पहुंची। अब जमाई राजा कल के जायवे की तैयारी में जुट गए और अम्मा ते सभी वस्तुओं के बारे में जानकारी लेने लगे कि मैया मेरे कपड़ा कहाँ धरे हैं, मेरे हथियार आदि कहाँ टंगे हैं।

जी। जमाई राजा तड़के ही अपने ससुराल के लिए निकल दीने। एक गांव के बाद दूसरों गांव पार कर फिर अपने सासरे पहुंचे। वहां लोगन की भीड़ जमाई।

जी। जैसे ही जमाई राजा ससुराल पहुंचे, विन को आदर सत्कार शुरू है गयो। विन के बैठवे की व्यवस्था की नी गई। विन के पांव दूध थे पखारे गए ताकि विन की थकान दूर है सके।

जी, चंद्रा की मैया जमाई जी के आदर सत्कार में को कमी न रखनो चाहे। जमाई राजा को पूरी व खीर बनाई जा रही हैं, क्योंकि जमाई राजा बहुत दिनन में यहाँ पधारे हैं। खाए

जी। थकान के कारण जमाई राजा ने थोड़ो सो ही खायो और जाय के बिस्तर पर पड़ गए। ज्यादा थकान के कारण विनय अच्छी नींद ना आए पाई और वे करौंठी बदलते रहे।

बाबा जी। आधी रात में चंदना 16 सिंगार करके कहूं जान लगी। वो अपने प्रेमी जाते वाकी प्रेम प्रसंग की चर्चाएं चल रही हैं, वाके पास चल दीनी जो समला सुनार को है और वाय दरवाजो खटखटाए के जगायो।

जी। चंदना ने अपने प्रेमी ते कही कि यदि तोय मिलना होए तो आखिरी बार मोते मिल ले, जी भर के बातें कर ले, क्योंकि अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ हमेशा के लिए, या के बाद हम कभू ना मिलेंगे।

जी। जमाई राजा तो वैसे ही अधकच्ची नींद सोए है। चंदना को आधी रात सजी धजी कहूं जाती देख वे उवा के पीछे चल दीने और अपनी तलवार को म्यान में डार अपने संग ले ली।

0: जी। जब जमाई राजा ने चंदना और वाके प्रेमी को देखो तो यह दृश्य देख के उनके पैरन तले जमीन खिसक गई और क्रोध के आवेश में वाने अपनी तलवार मयांते निकाली और अपनी पत्नी यानी चंदना के दो टूक कर दीने। यही के साथ चंदना की यह कहानी को अंत है गयो। यह कहानी हर सावन में एक मल्हार की तरह गाई जाए है। उम्मीद है आपको यह बहुत पसंद आई होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज आपने आनंद लिया। एक कथा का शीर्षक था चंदना। कथाकार थी विजेता चतुर्वेदी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं ये ब्रज लोकगीत।

भगवती देवी वाशिनी के स्वर में आप सुन रहे थे ब्रज लोक गीत। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने संभल को 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने लखनऊ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिल रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जिससे देश विकसित होता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा।
1: उन्होंने यहां राजीव भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत के संकल्प को याद दिलाया।
3: ये स्पीड, ये केवल स्पीड नहीं है, आपके समय को कम करने का माध्यम ही नहीं है, ये स्पीड विकास की स्पीड है, ये स्पीड समृद्धि की स्पीड है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जितनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उतना तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा और जितनी तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा उतने ही समृद्धि की नई ऊंचाई पर हमारा जनपद, हमारा प्रदेश और अंततः हमारा देश पहुंचेगा।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने अमरोहा में 207 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
3: ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चौधरी चरण सिंह जी के सपने को भी साकार कर रही है और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को दे रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद संभल में 569 करोड़ रुपए लागत की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिल रही है, विकास और विरासत का संरक्षण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण, सुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है तथा जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी

0: और यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जिले के श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर भी पहुंचे और उन्होंने यहां भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि आरोग्य और लोक कल्याण की कामना भी की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज लखनऊ में विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत थीम पर आधारित दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। इस शिविर में 190 से अधिक जिला युवा अधिकारियों और माई भारत एनएसएस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और भारत सरकार युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ पल्लवी जैन गोविल भी उपस्थित थीं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान आज ग्रेटर नोएडा में एक निजी शिक्षण संस्थान के मेराकी 2026 ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और देश का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा शिक्षा, कौशल, अनुशासन, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव को पुलिस ने आज 39 घंटे के रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपितों को सुबह जिला जेल से निकालकर पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और पुलिस लाइन लेकर पहुंची। पुलिस और जांच एजेंसी ने आरोपितों से पूछताछ की। वहीं चढ़ावा मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज कानपुर में कहा कि यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और रिमांड में लेकर के पुलिस ने पूछताछ की है। फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ, कुछ लोगों की गलती के कारण अपनी आस्था को कमजोर नहीं करें, क्योंकि आस्था एक स्थायी चीज है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।
0: भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज गोरखपुर में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा उपकरणों और उनके रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हाल भी जाना। श्री पाठक ने अधिकारियों को सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए।
2: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से बात किया, उनके परिजनों से बात किया, लेकिन जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें उमस भरा माहौल था। हमने तत्काल उसमें वातानुकूलित संयंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए हैं और उसकी फोटोग्राफ सीएमएस और सीएमओ हमें भेजेंगे। तत्काल मरीजों को उच्चीकृत करके सेवाएं दी जाएं, कहीं कोई कमी न रखी जाए, मरीजों की सेवा में परिजनों को कोई दिक्कत न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी से जनकल्याण के सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। प्रदेश में मॉनसूनी सक्रियता बढ़ने से बीते 24 घंटों में कई जनपदों में बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हमीरपुर में बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गोरखपुर में भी कल शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: गोरखपुर में कल शाम को हुई भारी बारिश के बाद बीती रात से ही आज सुबह तक हुई भारी बारिश में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख जगह असुरन के राप्ती कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला बाजार, विजय चौक, सिविल लाइन्स, विद्यालय रोड, जिला अस्पताल आदि जगहों पर जलभराव से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई। हालांकि कुछ देर बाद ही जलभराव समाप्त हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर।
0: मौसम विभाग ने अगले

0: तीन दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली कड़कने और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने संभल को 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने लखनऊ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

आज थोड़ी बात करते हैं, जो भी छूट गया है पीछे अब उसी से मुलाकात करते हैं। ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, अब खोल गांठ उसकी उन्हें आबाद करते हैं। सब कुछ तो बटोर नहीं पाएंगे इन कांपते हाथों में, मगर चंद खुशियों को थामने की शुरुआत करते हैं। माना कि ढलती हुई उम्र और याददाश्त के झड़ते हुए पत्ते हैं, चलो इन्हीं के संग अब अपनी तमन्नाओं से मुलाकात करते हैं। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त खुशबू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में

श्रोताओं, आप सभी के संदेश हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला संदेश हमने लिया है अमरावती महाराष्ट्र से। प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और हागोड़े परिवार हमसे जुड़ा हुआ है इस वक्त। अगला संदेश हमें मिला है सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंद्रा शर्मा का। ये संदेश हमने लिया है खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल। किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने हमें लिख भेजी है। जयवीर ठाकुर, शुभचंद्र बजाज कालका, मोहाली से टीडी मल्होत्रा हमसे जुड़े हैं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु अर्णव सत्यम, इन सभी का संदेश हमें मिला है झारखंड से। अगला संदेश हमें मिला है आप सभी का। आप हैं किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए। हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला, सतीश, अनेजा हमसे जुड़े हैं। ये संदेश हमें मिला है मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा का। बदायूं से अगला हमने संदेश लिया है दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब, सावरीन, शाहबाज, सैफ, ईशा।

खान आजम और अरहान खान। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर हमसे जुड़े हैं।

किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत का ये मैसेज हमें मिला है और ये संदेश हम तक आया है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े और विजया ताइड़े, विदर्भ से वसंतराव भोजने और सुनंदा भोजने का किसी भी गीत में शामिल कीजिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का हमें संदेश मिला है, भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी हमसे जुड़े हैं। श्रोताओं सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत, फिल्म का नाम है बादशाह हो और इस गीत को गाया है नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान ने।

बादशाह हूँ फिल्म में आपने सुना नुसरत फतेह अली खान को और राहत फतेह अली खान को। श्रोताओं अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। तो ये संदेश हमें मिला है, किसी भी गीत की इन्होंने भी फरमाइश हमें लिख भेजी है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमने लिया है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काली वंदना आदेश और वसुधा वज्रसेन का। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष चैतन्य मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान खुराना का मैसेज हमें मिला है। निपनगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का हमें ये संदेश मिला है। और ये संदेश हमने लिया है चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक अनिल जयवीर और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमसे जुड़े हैं। मलकापुर से संजय पाटिल और उषा, इनके साथ हैं प्रथमेश पाटिल। ये संदेश हमने लिया है सोंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री मोहित देविका गजेंद्र और हेयांश चंदन का। गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा हमसे जुड़े हैं, उनके साथ हैं मुकेश शर्मा। इन सभी का संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से। ये संदेश हमें मिला है बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित और हैप्पी राय का। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल राय का हमें ये संदेश मिला है। और ये मैसेज आया है गांव जाखोद राजस्थान से शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक और कुमारी पूजा खटक का। केएच राही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी हम्माद जमील का ये संदेश मिला है गंज डुडवारा से। अगला संदेश हमें मिला है कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री और झुमरी तलैया से अभय कुमार, सनातनी शिवानी, प्रियंका, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, देवी देवी शॉ और जयप्रकाश साव, बसंत लाव साव और हीरा मोती पन्ना लाल साहब हमसे जुड़े हैं। और अगला संदेश बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद और सानवी और ये हैं हर्षदा देशमुख जाफरा बाद इन्होंने मैसेज हमें किया है कालेगांव से। ये संदेश मिला है हमें, ये फरमाइश करता है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील, दीपिका, गव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक और विनोदपुरी और इनके साथ इनके सभी साथी हमसे जुड़े हैं। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए अगला संदेश हमें मिला है सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप अशोक, श्री बडनेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर हमसे जुड़े हैं। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, मिफ्रा बेबी चाहत का ये संदेश मिला है झारखंड से। अगले पसंद करने वाले श्रोता हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले, नादुरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश अनिकेत, सागर कटक से, नासिक से विशाल गवली, सोनाली समर्पण और भक्ति गवली का ये मैसेज हमें मिला है। नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे हमसे जुड़े हैं बुलढाणा से। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का, आप हैं

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए गंज डुंडवारा से एम खलीफ कुरैशी, नुसरत बेगम एजाद कुरैशी, बेबी अरिमा हबीबा का ये संदेश मिला है। गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर हमसे जुड़े हैं महाराष्ट्र से। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया का संदेश हमें मिला है। परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत का हमें ये संदेश मिला है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह झावड़ा, इंद्रजीत कौर झावड़ा, स्वीटी झावड़ा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। सादुल शहर से राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ ने संदेश हमें लिखा है। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और इन्होंने संदेश लिखा है हिसार से किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए। विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, वीके, कैलाशपुरी, नीलम, रमा, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी हमसे जुड़े हैं लुधियाना से। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना कौसर हमसे जुड़े हैं बिजनौर से। अगला संदेश मध्य प्रदेश से हमें मिला है। विनोद मूड़ा, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा का किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का संदेश हमें मिला है। श्रोताओं, सुन लेते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है जूली और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने।

जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी का संदेश अभी हमें प्राप्त हुआ है। गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल आजाद हमसे जुड़े हैं।

इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव, सत्यम, आनंद ने। झारखंड से इनका संदेश हमें मिला है। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने भी हमें इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी।

ये संदेश हमें मिला है बनार शाह से सूरज प्राची और एकलव्य लोढ़े का। अगला संदेश हमने लिया है सवर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप, गुरनूर गुरलाल और अविराज सिंह का। ठाकुरा वाला से इन्होंने हमें ये संदेश लिखा है। और अगला संदेश हमें मिला है नेवासा खोपटी से बंडू लोहार और चंद्रकला पोपट घट का। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और विद्या कुमारी हमसे जुड़े हैं। पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष, पांडुरंग कुंभार हमसे जुड़े हैं कुंभार गली कोलगांव से। कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी हमसे जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हमें मिला है पहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से ही, पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर का। विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, प्रभा देवी, पवन कुमार, पंडरिया से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात से अजीत, प्रमिला, भावेश और जैमिन भावसार का। झालावाड़ राजस्थान से हमसे जुड़े हैं ये श्रोता, नाम है इनका अनूप सिंह नथावत और समस्त परिवार हमसे जुड़ा है। अगला मैसेज हमें मिला है संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू, इनके साथ हैं ममता, खंडवा मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजवती काजल, पूर्वी रेशमा साहू और राजेश साहू का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। अजीज भाई, मतीन भाई, साहिक चांद और फारूक फूल वाले हमसे जुड़े हैं निजामाबाद तेलंगाना से। शनि चौक खंडवा से उमा राज, कुलदीप राज, जगदीश और प्रभा रानी, ये संदेश हमने लिया है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इस्फाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, निरोफर फातिमा का। किसी भी गीत के लिए रेशमा अंसारी ने हमें लिखा है, सना खान है।

के साथ शकीला अंसारी डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, कोई भी नगमा हमें सुनवा दीजिए। तेलंगाना से ही खाजा रिजाउद्दीन और खाजा फासीउद्दीन, आयशा और जुबेरिया हमसे जुड़े हैं। मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा परिधि, मायरा सुरोशी हमसे जुड़े हैं महाराष्ट्र से। गुन्नौर से आदिम कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, और इनका हमें संदेश मिला है। ये संदेश हमने लिया है अंबाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत, आरती, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य, मोहम्मद वराउद्दीन, फजाल लल्ला, फरहान, समीरा, आजमीन गुड़िया हमसे जुड़े हैं तेलंगाना से। गोकुल चौक गंगजला सरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल, फुलकीवानी और फलना झा का ये संदेश हमें मिला है। सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीना, सोनाली और अनामिका हमसे जुड़े हैं बिहार रेडियो लिसनर क्लब से। दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव का संदेश हमें मिला है। जाकिर मुलाड़ी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलाड़ी हमसे जुड़े हैं। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना क्रिश फिल्म का ये गीत। इसी के साथ शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बेहद ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

एयरलिफ्ट, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। स्वर दिया था अमाल मलिक और अरिजीत सिंह, इनके साथ थे तुलसी कुमार। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

प्यार झुकता नहीं। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, महेंद्र कपूर और

0: निकाह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनते हैं देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं हीरो नंबर 1 के कुछ गीत।

उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ों में आपने सुना हीरो नंबर 1 का ये गीत। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

विनोद राठौर, साधना सरगम की आवाजों में आपने सुना हीरो नंबर वन फिल्म का ये गीत। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ

0: और तनिया के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल्कि 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के

0: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
4: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा

की चेन्नम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता

कामरान अहमद की आवाज में आपने सुना जन्नत फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं तुलसी कुमार के स्वर में। फिल्म का नाम है एक पहेली लीला।

कुमार सानू के स्वर में आपने सुना इम्तिहान फिल्म का गीत। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन, फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिकाओं में थे।

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रवि।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सई जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: मैं तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, लीमू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओम पुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और उसका साइज सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा हो गया यहाँ?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुईं। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, एके हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के

0: मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
2: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। कड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
3: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
4: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी

अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना बीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

0: अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।
1: प्यार किया नहीं।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

कि भागीराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बीताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रोज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devvrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries, such as USA, Canada, Spain, France, Italy, and Germany. Devvrat Mishra has been honored with the National Youth Festival Award, Swarmani Alankaran, Kashi Ratn, Sangeet Shikhar, BHU Kaustubh Samman, German Best Jazz Critic Award, and the World Music Visionary Award, USA. In tonight's program, accompanying him on tabla is Prashant Mishra, an A-grade artist of Akashvani. Devvrat Mishra is beginning his sitar recital tonight with Raag Jog, Vilambit and Dhrutgat set to Teen Taal.

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विद धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाई देवव्रत मिश्रा इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। अकम्पनींग हिम ऑन तबला वॉज प्रशांत मिश्रा। अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी वाराणसी, दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
3: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में,

0: युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।